0: पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ। हेलो हेलो वेलकम। आज ना मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करूंगी जो कि संजय दत्त की कमबैक फिल्म मानी जाती है। वेल, कहते हैं कि इसी फिल्म ने संजय दत्त को ना एक और लाइफलाइन दी थी एट द बॉक्स ऑफिस। क्या इस फिल्म का नाम पता है आपको? नाम ही तो पूछ रही हूँ। अच्छा, नहीं पता तो चलो मैं ही बता देती हूँ नाम। अभी भी नहीं समझ में आया। वेल, इस फिल्म का नाम ही नाम है। इस फिल्म में थी नूतन जी, कुमार गौरव, संजय दत्त, पूनम ढिल्लो, अमृता एंड परेश रावल। वेल, फिल्म का नाम नाम है और सारे रेट्रो फैंस ने आई एम श्योर इस फिल्म को देखा होगा बिकॉज ये संजय दत्त की कमबैक फिल्म थी। इस फिल्म में अगर एक और खास बात बताऊं, इनफैक्ट ये वाली बहुत ही खास बात है कि ये सलीम जावेद जोड़ी ने अलग होकर के ये फिल्म लिखी थी। जब दोनों यू नो दे पार्टेड वेज, तब ये सलीम साहब की सोलो फिल्म थी। इस फिल्म की स्क्रीन प्ले सलीम साहब ने लिखा, इस फिल्म की स्टोरी सलीम साहब ने लिखी, इस फिल्म के डायलॉग्स सलीम साहब ने लिखे थे। इस फिल्म में ना बहुत ही मज़ेदार कुछ चीज़ें हुई थी। बच्चन साहब ने एक कंडीशन रखी थी, क्या थी वो भी बताऊंगी वापस अश्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।
1: गुड नाइट।
2: हाँ, गुड नाइट।
1: अच्छा, गुड नाइट।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म के लिए रूमर था कि शायद बच्चन साहब ऐसा इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो संजय दत्त और कुमार गौरव का परफॉर्मेंस एनालाइज करेंगे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द पॉपुलर फिल्म नाम जिसमें थे संजय दत्त कुमार गौरव। जब ये फिल्म बनी ना तो उसके बाद अमिताभ बच्चन जी ने इस फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग की रिक्वेस्ट करी विद द मेकर्स ऑफ द फिल्म। वेल, रूमर ये उठा और बहुत सारी मैगजीन्स में ये लिखा गया कि शायद इसलिए क्योंकि बच्चन साहब उस समय संजय दत्त की और कुमार गौरव की परफॉर्मेंसेस देखना चाहते थे, उसे एनालाइज करना चाहते थे। वेल, अगर ऐसा ही होता तो फिर भाई उससे पहले भी जा की बाजी, एक से भले दो, ये दो फिल्में रिलीज हुई थी विच वर मेड विद ऑफ कोर्स कुमार गौरव एंड संजय दत्त, तो तब भी बच्चन साहब ये कर सकते थे ना कि इनकी प्राइवेट स्क्रीनिंग कर दो, उन्हें तो कौन ही मना करता। लेकिन अब उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे का रीजन बहुत इंटरेस्टिंग है, बताऊंगी आपको ये पूरी कहानी। कम राइट बैक, मेरा नाम है श्रेया एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम टुडे ओनली ऑन मिर्ची।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

ये वाली थ्योरी बिल्कुल भी नहीं चली, क्योंकि ऐसा काम तो बच्चन साहब पहले भी कर सकते थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द वेरी वेरी फेमस फिल्म जिसका नाम था नाम। इस फिल्म में थे संजय दत्त साहब, इसमें थे कुमार गौरव, नूतन जी, पूनम ढिल्लो, अमृता सिंह, परेश रावल, और सलीम साहब की लिखी हुई ये सोलो फिल्म थी। यानी सलीम जावेद ने जब अपनी जोड़ी अलग की तो सलीम साहब की लिखी हुई ये पहली वो फिल्म थी जिसके डायलॉग्स, जिसका स्क्रीन प्ले, जिसकी स्टोरी सब सलीम साहब ने अकेले लिखा था। सो भाई हुआ ये कि जब ये फिल्म का प्रीमियर रखा गया तो अमिताभ बच्चन जी ने मेकर्स ऑफ द फिल्म से रिक्वेस्ट किया कि मुझे ना इस फिल्म की प्राइवेट स्क्रीनिंग देखनी है। सो पीपल थॉट कि ओ हो, बच्चन साहब ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि शायद वो थोड़े इनसिक्योर्ड हैं कि यू नो संजय दत्त वापस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, उनके एक तरह के कि ये कमबैक फिल्म थी। सो ही वांट्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ कुमार गौरव एंड संजय दत्त। लेकिन फिर लोगों ने ये भी कहा कि अगर ऐसा ही होता तो जान की बाजी, एक से भले दो, ये दो फिल्में भी पहले इन एक्टर्स के साथ रिलीज हो चुकी थी, तो बच्चन साहब पहले भी ये रिक्वेस्ट कर सकते थे। फिर आखिर माजरा क्या था? माजरा एक्चुअली में ये था कि बच्चन साहब देखना चाहते थे कि सलीम साहब ने अकेले कैसी फिल्म बनाई है, जब वो जावेद साहब के साथ नहीं है, उनका स्टोरी कैसी है, उनका स्क्रीन प्ले कैसा है, उनके डायलॉग्स उन्होंने अकेले कैसे लिखे हैं, एंड क्या उनको पसंद आई या फिर नहीं आई। इसके पीछे भी इट्स अ लवली स्टोरी। कम राइट बैक, आई लेट यू नो।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man, brand new day आ गई है and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake, किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सबकी बहुत तारीफ करी, उनको डिनर पे भी ले गए, लेकिन सलीम साहब को कुछ नहीं कहा। पर सलीम साहब समझ गए। पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ, और आज नाम फिल्म की बात हो रही है। हाँ जी, संजय दत्त वाली नाम, या फिर आप कह सकते हो कुमार गौरव वाली नाम, नूतन जी वाली नाम, पूनम ढिल्लो वाली नाम, अमृता सिंह वाली नाम, ये सारे एक्टर्स इस फिल्म में थे। एंड इस फिल्म को प्राइवेटली देखने की रिक्वेस्ट करी थी अमिताभ बच्चन ने विद द मेकर्स ऑफ द फिल्म। सो एवरीबडी थॉट कि शायद वो कुमार गौरव और संजय दत्त को देखना चाहते हैं, एज इन उनका एक्टिंग परफॉर्मेंस डेफिनेटली यू नो इस फिल्म में देखना चाहते हैं, एनालाइज करना चाहते हैं, शायद वो इनसिक्योर्ड है, ऑल ऑफ दैट। लेकिन एक्चुअल में बात पता है क्या थी? बच्चन साहब देखना चाहते थे कि उनके इतने पुराने दोस्त सलीम खान ने ये पिक्चर अकेले कैसे लिखी है। बिकॉज दिस वॉज द फर्स्ट फिल्म जो सलीम खान ने लिखी थी जावेद साहब से अलग हो करके। ये जोड़ी जब अलग हो गई तो सलीम साहब ने नाम के डायलॉग्स लिखे थे, इसका स्क्रीन प्ले लिखा था, इसकी स्टोरी लिखी थी अलग, एकदम सोलो विदाउट जावेद अख्तर। सो बच्चन साहब वॉन्टेड टू सी कि उनके दोस्त ने कैसा काम किया है अकेले, एंड उनको इतना पसंद आया कि वो उस रात इस फिल्म के सारे कास्ट एंड क्रू को डिनर पे ले गए और उनकी बहुत तारीफ की। एक नोट भी, एक हैंड रिटन नोट भी दिया टू द कास्ट एंड क्रू ऑफ दिस फिल्म नाम। लेकिन उन्होंने सलीम साहब को कुछ नहीं कहा। जब सलीम साहब को ये बात पता चली सलीम साहब समझ गए कि भाई अमिताभ बच्चन को ये फिल्म पसंद आई है। वो कहते हैं ना कि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू एंड एक्चुअली नो तारीफ। आपका दोस्त समझ जाएगा कब आप उसकी तारीफ कर रहे हैं। पुरानी जींस पे मैं हूं श्रेया, कम राइट बैक।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म के बहुत सारे सीन्स सलीम खान ने अपने घर से ही उठाए थे। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम, जिसमें थे कुमार गौरव और संजय दत्त। तो अगर आप ये फिल्म देखो ना, आपको दिखेगा कि संजय दत्त कुछ कपड़ों पे आयरन कर रहे हैं और उनको घसीट करके ना उन्हीं कपड़ों को कुमार गौरव पहन लेते हैं, और उसके बाद दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है कपड़ों को लेकर के। सो एक्चुअली में ये सीन सलीम खान ने अपने घर में देखा था, जब सलमान, अरबाज और सोहेल में एग्जैक्टली इस बात पे लड़ाई होती थी कि कोई कपड़े आयरन करता था और दूसरा बंदा ना उन्हीं आयरन क्लोथ्स को पहन लेता था। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। वेल, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन हुआ जब राजेंद्र कुमार, जो कि इस फिल्म में पैसा लगा रहे थे, नाम में पैसा लगा रहे थे, वो गए थे स्क्रिप्ट को सुनने सलीम खान के घर। आई विल लेट यू नो। वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: उठे सबके कदम, देखो रम पम पम,

कई बार ना आपकी जुबान को कुछ खास बोलने की जरूरत नहीं होती है, बस आपकी आंखों का इशारा काफी होता है। पुरानी जींस पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम टुडे। वेल, इसमें थे कुमार गौरव, संजय दत्त, नूतन जी, अमृता सिंह, पूनम ढिल्लो एंड अदर्स। लेकिन सबसे खास बात इस फिल्म की ये थी कि इसको सलीम साहब ने इंडिपेंडेंटली लिखा था, यानी जब सलीम जावेद की जोड़ी टूटी, जब दोनों लोग अलग अलग रास्ते पे निकल गए, तब सलीम साहब की पहली सोलो फिल्म थी जो उन्होंने लिखी अकेले। यानी इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा, इस फिल्म की स्टोरी लिखी। अब कहते हैं कि सलीम साहब की ये कहानी सुनने के लिए राजेंद्र कुमार, जो कि इस फिल्म में पैसा लगाने वाले थे, ये स्क्रिप्ट सुनने के लिए उनके घर गए। तो स्क्रिप्ट में उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस, क्योंकि राजेंद्र कुमार बहुत सारे चेंजेस बताते थे, स्पेशली जब उनके बेटे कुमार गौरव हों इन द फिल्म, सो उन्होंने कुछ कुछ चेंजेस बताने शुरू किए। अब सलीम साहब तो ऑलरेडी इतनी हिट फिल्में दे चुके थे, दीवार हो, शोले हो, सो मैनी ऑफ देम। तो जब उन्होंने चेंजेस बताए और सलीम साहब सामने के सोफे में एक कोने पे बैठे हुए थे, उन्होंने बस कहते राजेंद्र कुमार को देखा और राजेंद्र कुमार समझ गए कि ना ना ना ना, ये काम सलीम साहब के साथ नहीं करना है। उन्होंने मुस्कुरा के कहा, कोई चेंजेस नहीं भाई, जैसा आप लिखेंगे वही होगा। पुरानी जींस पे मैं हूँ श्रेया। यू कैन रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माई हैंडल, RJ SHRUYA श्रेया विद लव।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

बहुत कोशिश करी राजेंद्र कुमार ने अपने बेटे कुमार गौरव को ये समझाने के लिए कि इस फिल्म में मेन लीड उन्हें करना चाहिए। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम टुडे। ये फिल्म जो कि संजय दत्त की कमबैक फिल्म भी मानी जाती है और उनके करियर का यू नो टर्निंग पॉइंट भी मानी जाती है। राजेंद्र कुमार जी ने ऑफकोर्स भाई फिल्मों की बहुत समझ थी और वो इस फिल्म को बना भी रहे थे, प्रोड्यूस भी कर रहे थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा कुमार गौरव इस फिल्म में मेन लीड में हो, एंड ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि ही न्यू कि कहीं ना कहीं कुमार गौरव का करियर, उनका फिल्मी रास्ता जो है वो थोड़ा डगमगा रहा है। लेकिन कुमार गौरव ने मेन लीड लेने से साफ मना कर दिया। What was the reason? बहुत ही खूबसूरत रीजन है जो मैं आपको कुछ गानों के उस पार बताऊंगी। Come right back, मैं हूं श्रेया, only on पुरानी जीन्स।

0: साथ जीतू राज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

दोस्ती की जीत हुई, करियर के आगे दोस्ती चुनी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम। ये जो फिल्म थी ये कुमार गौरव के पापा यानी राजेंद्र कुमार ने बनाई थी, एज इन प्रोड्यूस करी थी। अब भाई उन्होंने ये फिल्म बनाई कुमार गौरव के लिए इसलिए थी कि वो चाहते थे कि उनके शेकिंग करियर को, उनके बेटे के लड़खड़ाते हुए बॉलीवुड करियर को थोड़ी लाइफलाइन मिले। और दैट्स व्हाई ही वांटेड कि दोनों कैरेक्टर्स में से उनका बेटा कुमार गौरव फिल्म का मेन लीड वाला रोल ले। लेकिन कुमार गौरव ने साफ मना कर दिया क्योंकि वो चाहते थे कि उनका करीबी दोस्त, उनका बेस्ट फ्रेंड संजय दत्त ये रोल करे। संजय दत्त का करियर भी उस समय काफी शेक हो रहा था। इनफैक्ट नाम उनकी कमबैक फिल्म मानी जाती है। कुमार गौरव को ये बात पता थी कि उनका दोस्त जो है वो अगर मेन लीड में आया तो उनके पास इतनी तारीफ नहीं आएगी, तारीफ जाएगी संजय दत्त के पास। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पापा को समझाया एंड इस फिल्म में सेकंड लीड ली। ऑफ कोर्स उनके काम को बहुत तारीफ मिली, लेकिन हाँ लाइमलाइट संजय दत्त ले गए थे। ऐसी दोस्ती सुनी है पुरानी जीन्स पे। मैं हूँ श्रेया, फेसबुक और इंस्टा पे भी हूँ, RJ श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल, RJ SHREYA विद लव।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

महेश भट्ट जी के करियर की भी ये टर्निंग पॉइंट थी। पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम। संजय दत्त की फिल्म थी ये। इसमें थे कुमार गौरव, पूनम ढिल्लो, अमृता सिंह एंड परेश रावल। अच्छा, महेश भट्ट के लिए ये फिल्म इसलिए खास थी क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने फिल्में बनाई थी, एक थी अर्थ 1982 की और दूसरी थी सारांश 1984 की, और दोनों ने बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास काम नहीं किया था। लेकिन हाँ, नाम ने इतना अच्छा काम किया कि उसके बाद महेश भट्ट वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ गुड डायरेक्टर इन द इंडस्ट्री। इस फिल्म की दो खास बातें और थी। नंबर वन, ये सलीम साहब की इंडिपेंडेंटली लिखी हुई पहली फिल्म थी। जब सलीम जावेद की जोड़ी टूटी तो सलीम साहब की ये फर्स्ट फिल्म थी जो उन्होंने एज अ सोलो राइटर लिखी थी। इस फिल्म के डायलॉग, स्क्रीन प्ले, स्टोरी सब सलीम साहब ने अकेले लिखी थी। और दूसरी, ये संजय दत्त के भी करियर का टर्निंग पॉइंट थी। ये उनकी कमबैक फिल्म थी क्योंकि इससे पहले 5 फिल्में जो उन्होंने करी थी वो सब एक के बाद एक फ्लॉप होती जा रही थी। पुरानी जीन्स पे आज इसी फिल्म नाम की बातें चलती रहेंगी। मेरा नाम है श्रेया। इनकेस आपको मुझसे कुछ बात करनी है ऐसे 1-to-1, तो फेसबुक और इंस्टा पे आरजे श्रेया वुड लव, दैट्स माई हैंडल।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया पे अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया इज जक्सटापोजिशन्ड by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: Lobby number 420.
1: Excuse me, please. My name is Frankie?
2: No.
1: No. Sebastian?
2: No.
1: Goldie? Soldi?
2: No! Anthony Gonsalves!
0: Oh, yes! Anthony Gonsalves!
3: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ नाम फिल्म की बात हो रही है। अब जो मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ ना, ये मुझे लगता है कि ये रिलीज तो इस फिल्म के साथ हुआ था इन 1980s, लेकिन आज भी पंकज उदास जी का जब ये गाना सुनो ना, आपको कोई ना कोई ऐसा दोस्त या कोई ना कोई ऐसा यार, कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर याद आ जाता है जो कभी आपको कुछ लेटर्स लिखता था। एंड यू नो व्हाट, ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि मूवी थिएटर्स में उस समय हंगामा होता था कि इस गाने को फिर से चलाया जाए। तो आफ्टर द मूवी नाम यूज़ टू फिनिश, इस गाने को फिर से रीरन किया जाता था। एंड स्पेशली क्योंकि उस टाइम पे ना मिडल ईस्ट से बहुत सारे लोग माइग्रेट कर रहे थे, तो वो इस गाने के साथ बहुत कनेक्ट कर पाते थे। एंड द सॉन्ग इज चिट्ठी आई है आई है, पंकज उदास जी का एक गाना। ओहो, इसको ना थोड़ा सा आंख बंद करके कोई खास हो उसको याद करते हुए जोर से सुनना। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

राजेंद्र कुमार हमेशा अपने प्रोडक्शन में जरूर होते थे कहीं ना कहीं, लेकिन इस फिल्म में नहीं थे क्योंकि इस फिल्म में उनके सूटेबल कोई रोल ही नहीं था। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म नाम टुडे। वेल, इस फिल्म को प्रोड्यूस करने वाले थे राजेंद्र कुमार और उनके बेटे कुमार गौरव भी। सो राजेंद्र कुमार का ये सेट रूल था कि वो अपने प्रोडक्शन वाली फिल्मों में ना कहीं ज़रूर आते थे, लेकिन इस फिल्म में नहीं आए। बहुत कोशिश की उन्होंने कि कोई छोटा मोटा कैरेक्टर बना लें, लेकिन नहीं सूट बैठा। सो उनके बेटे कुमार गौरव ने भी कहा कि नहीं नहीं, ये फिल्म आपके बिना ही बन जाएगी। पुरानी जीन्स पे नाम फिल्म की बातें हो रही हैं, सो डोंट यू गो एनीवेयर। मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर God's sake किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने। वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स में आबू श्रेया के साथ जाने का टाइम, यानी वी गॉट टू हिट द हाईवे। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट उन लोगों के लिए है जो पहली मुलाकात में तो घबराए होते ही हैं, लेकिन जब भी उनसे मिलते हैं तो वो पहली मुलाकात ही लगती है, उतनी ही रोमांटिक लगती है, उतना ही एक्साइटमेंट होता है उनसे मिलने से पहले जैसे कि पहली बार मिल रहे हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो ये गाना आज उनके लिए और ऑफ कोर्स आपके लिए। ऑन दैट नोट, दिस इज श्रेया साइनिंग ऑफ, आई विल सी यू टुमारो। ख्याल रखो अपना, एंड या इफ यू मिस मी यू नो वेयर टू कैच मी, फेसबुक और इंस्टा, आरजे श्रेया विद लव इज माई हैंडल, दैट्स आरजे SHRUYA श्रेया विद लव। गुड नाइट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Oh, Kaden, Spider-Man, brand new day आ गई है. And for God's sake, please theater में जाकर ही देखो. Is what जीतू राज will tell you. क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं. Especially जब characters आपस में बात करते हैं, तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है, वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake, किसी से भी story मत सुनो. Don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batchno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake, किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: और सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: समय बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या हर त्योहार के पीछे सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक गहरी लाइफ विजडम भी छुपी होती है? आइए ऐसे ही एक त्योहार के जरिए इसे समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, बचपन में जब मैं चित्रहार देखता था तो उसमें एक जन्माष्टमी के आसपास ना एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, खुद्दार फिल्म का 1982, अमिताभ बच्चन का गाना था कि मच गया शोर सारी नगरी रे। ये दही हांडी के सेलिब्रेशन पे एक गाना था और मेरे लिए ना ये सिर्फ एक खेल जैसा था। बहुत बाद में मुझे किसी ने बताया कि दरअसल ये सिर्फ खेल नहीं है, दही हांडी जो सेलिब्रेशन है वो एक्चुअली बहुत कुछ सिखाता है। जन्माष्टमी पे जो किया जाता है वो टीम वर्क सिखाता है, वो फाउंडेशन के बारे में सिखाता है, वो म्यूचुअल ट्रस्ट के बारे में सिखाता है और वो डिटर्मिनेशन के बारे में सिखाता है। क्योंकि जब तक एक दूसरे को आप ट्रस्ट नहीं करते, आप डिटर्मिंड नहीं है, आप स्ट्रांग नहीं है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है और आप टीम वर्क से नहीं करते, आप ऊपर तक नहीं पहुंच सकते और वो मटकी जो वो फोड़ नहीं सकते। लेकिन ज्यादातर देखा जाता है, जीवन हो, कॉर्पोरेट लाइफ हो, घर हो, परिवार हो, जो भी हो, हम क्या है, सब मटकी फोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो चुपचाप काम करना बिना किसी क्रेडिट के, इसको जो है हम महत्व नहीं देते, हम फाउंडेशन नहीं बनना चाहते।
4: पहले तो वो जो मटकी फोड़ना है वो क्या फोड़ना है, वो कोई मटकी फोड़ने की बात नहीं थी। मटकी फोड़ना माना अपने ईगो को फोड़ना। वो सिंबॉलिक है एक्चुअली मटकी फोड़ना। और ईगो को खत्म करने के लिए जो आपने वो सारी बातें कही
3: जी,
4: कि उसके लिए ट्रस्ट भी चाहिए, म्यूचुअल कोऑपरेशन भी चाहिए, फाउंडेशन भी चाहिए, जब तक वो सब कुछ नहीं होगा तो ईगो खत्म नहीं हो सकती। तो वो मटकी फोड़ना एक रियलाइजेशन है कि मैंने सिर्फ वो मटकी फोड़ी कि मैंने अपनी ईगो को भी तोड़ा।
3: अच्छा,
4: और ईगो की निशानी क्या है? क्लैरिटी। इफ इट्स ईगो इट हर्ट्स।
3: वाह क्या बात।
4: जहाँ अभिमान है वहाँ जल्दी जल्दी अपमान महसूस होता है। तो ये रियलाइजेशन है कि अगर मुझे अपमान महसूस होता है तो मुझे उस चीज का अभिमान है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभावपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के भी हम अपनी बात मजबूती और प्यार से रख सकते हैं? आइए इसका तरीका जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी क्या होता है, जब आप एक रूम में होते हैं जहाँ शायद आप में ये पर्सपेक्टिव है और आप कहते हैं देखो मैं झगड़ा करने के मकसद से नहीं आया हूँ, एक डायलॉग डिस्कशन करते हैं, लेकिन सामने वाला आप पे हावी हो रहा है, तो आपको लगता है यार अगर मैं यहाँ पे चुप रहा और मैंने कहा ठीक है भाई जैसा आप कहें, हो तो जाएगी बात, लेकिन शायद बात सही नहीं हो, कहीं ना कहीं जो हावी है वो उसको अपनी दिशा में ले जाता है और वो जरूरी नहीं कि सही डिसीजन हो। ऐसे केस में क्या करना चाहिए?
4: सी, अगर कोई हावी हो रहा है वो उसका रोल है। आपको क्या करना है, ऐसा नहीं आप चुप हो जाएं, कभी भी चुप होने की बात नहीं है, लेकिन सत्यता सभ्यता से ही रखनी चाहिए, अपनी बात डिग्निटी ग्रेस से रखनी चाहिए।
3: तो ये जरूरी है कि चुप ना रहें, लेकिन अपनी डिग्निटी से
4: अपनी बात जरूर कहें। देखो, सच को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, सच को सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त है।
3: सही बात।
4: तो आप अपनी बात कहें, उसके बाद उनको डिसाइड करने दें उनको क्या करना है। और इसीलिए आई रियली लाइक दिस लाइन दैट आई एक्सेप्ट यू बट आई डोंट अग्री विद यू।
3: अरे वाह, क्या बात है,
4: दोनों में बहुत फर्क है।
3: वी
4: अग्री टू डिसएग्री, आई एक्सेप्ट यू, मैंने एज अ पर्सन अगर ये आपका नजरिया है और आप ऐसा करना चाहते हैं और आप इस तरह से आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, ओके आई एक्सेप्ट यू बट आई डोंट अग्री विद यू। मैं शायद आपकी जगह पर होंगे तो मैं ये नहीं करूंगा, ये मेरी राय नहीं है, ये मेरा तरीका नहीं है, पर अगर आपको ठीक लगता है तो मैं आपके बारे में गलत क्यों सोचूं? आपको हक है अपना जीवन जीने का। सो आई एक्सेप्ट यू बट मे बी आई डोंट अग्री विद यू, तो फिर वो आर्ग्यूमेंट नहीं होता है।
3: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Kochi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या आर्ग्यूमेंट्स की जगह ओपन डायलॉग को अपनाकर हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं? आइए इस बात को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मेरी दो बहनें हैं और कजन्स बहुत सारे हैं, हम एक दूसरे को भाई बहन ही कहते हैं। ऑलमोस्ट इतने क्लोज हैं कि ऐसा लगता है कि वी आर वन बिग फैमिली, और हम सब बहुत अलग हैं एक दूसरे से। और ज्यादातर राखी का दिन छोड़ के ज्यादातर हमारे बीच में घमासान युद्ध होता है घर पे। इतनी सारी ओपिनियंस होती हैं, बट देर आर दीज स्मॉल लिटिल फेस्टिवल्स, वो दिवाली हो, राखी हो, या और कोई भी सेलिब्रेशन हो, जहाँ हम सब एक साथ बैठ के खाने के टेबल पे बात करते हैं। और जो वो राखी का वो एक तरह से पवित्र बंधन होता है ना, तब हम रियलाइज करते हैं कि हम चाहे कितने ही डिफरेंट हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें बांधता है। और वो शायद तब हमें रियलाइज होता है कि हाँ, हम अलग हैं लेकिन हम पेड़ जो है वो तो एक ही है, एक ही जगह से निकल के आए हैं। और ये बहुत जरूरी है समझना कि हम डिफरेंट हैं लेकिन फिर भी ठीक है।
4: मतलब ठीक क्या है, ये बहुत नेचुरल है। घमासान युद्ध के जो आपने बात करी, वो घमासान युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि हम डिफरेंट हैं, लेकिन जो आपको ठीक लगता है आप उसको प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं।
3: हम सभी कोशिश करते हैं,
4: तो वो आर्ग्यूमेंट में चला जाता है, फिर वो कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। आप अगली बार टेबल पर कोशिश करें डिस्कशन की और डायलॉग की। जब हम डिस्कशन और डायलॉग करते हैं ना, सो वी आर नॉट, हम उस इंटेंट से नहीं बैठते कि मुझे अपने को प्रूफ करना है। हम उस इंटेंट से बैठते हैं कि ये मेरा ओपिनियन है, पर हो सकता है कि शायद उनका ओपिनियन अलग भी हो और मेरे से बेहतर भी हो,
3: शायद बेहतर हो।
4: हो सकता है कि कोई दो बात मैं उनसे सीख लूं। आर्ग्यूमेंट में हमेशा कहते हैं 1+1=0, डिस्कशन में कहते हैं 1+1=2, लेकिन एक डायलॉग, एवरीबडी शेयरिंग देयर ओपिनियन, देयर पर्सपेक्टिव, उसमें कहते हैं 1+1=3, 5 भी हो सकता है, मतलब यू कैन जस्ट ग्रो 11। सो द होल आइडिया इज कि जब हम बैठे हैं हम अपने पर्सपेक्टिव से अटैच नहीं होने चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: रक्षाबंधन के बदलते दौर में क्या इस त्योहार के मायने भी बदल गए हैं, आइए जाने।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, रक्षाबंधन बहुत खूबसूरत त्यौहार है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम घरों के अंदर तो थ्रेड बांध रहे हैं, लेकिन जैसे ही दरवाजे के बाहर जाते हैं तो हम सोसाइटी को जो वो श्रेड कर रहे हैं, पूरे वो जो फैब्रिक है उसको श्रेड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि कहीं ना कहीं हमने इसको शायद कमर्शलाइज कर दिया है, चलिए वो अपनी अपनी राय है, ओपिनियन है, तरीका है, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम वो धागा बांध रहे होते हैं ना, हमारे दिमाग बहुत डिवाइडेड होते हैं। आज हमारे बहुत सारे ओपिनियंस हैं, हमारे बहुत मतभेद हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू में एक्सेट्रा, और राखी के मौके पे भी कई बार देखता हूँ जब फैमिलीज एक साथ आती हैं तो वहाँ पे भी डाइनिंग हॉल पर जो है वो इस तरह से बातें हो रही होती हैं कि लगता है कि किसी भी मोमेंट अभी झगड़ा होने वाला है। सो आई वॉन्ट आस्क यू कि हमारे रिस्ट्स पे तो प्यार बंधा हुआ है, लेकिन हमारे माइंड्स जो डिवाइडेड हैं उसका क्या करें?
4: एक्चुअली वही तो काम करना है ना, वो तो केवल एक प्रतीक है, और आप कितने दिन तक उसको रखेंगे? एक दिन, दो दिन, फिर आप उसको निकाल ही देते हैं। तो वो जो प्यार है वो सिर्फ कलाई तक नहीं, एक्चुअली दिल में होना चाहिए। और उसके लिए जो आप कह रहे हैं कि हमारे डिफरेंट ओपिनियन है, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। आप अगर दो जने हैं तो सेम कैसे हो सकते हैं?
3: सही बात।
4: हर चीज के प्रति जो आपका पर्सपेक्टिव है, ओपिनियन है, वो डिफरेंट ही होगा। पर प्रॉब्लम इसमें है कि हम डिफरेंसेस को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे, हम डिफरेंसेस को सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे, हम ये कोशिश क्यों कर रहे हैं कि सामने वाला मेरी तरह बन जाए। हमें इतना ही शिफ्ट लेकर के आना है कि वी आर डिफरेंट। इट इज नॉट कि मैं सही आप गलत।
3: सही बात।
4: सिर्फ इतना अपने को याद दिलाना है हम अलग अलग।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता, ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

त्रिपुरपतिं भज विश्वनाथम् भूताधिपं भुजगभूषण भूषिताङ्गं व्याघ्राजिनाम्बरधरं जटिलं त्रिनेत्रं पाशाङ्कुशाभयवरप्रदशूलपा

पुरपते स्तवनम शिवस्य व्यासोक्तमष्टकमिदं पठिता मनुष्या विद्यां श्रियं विपुल सौख्यमनल्त कीर्तिम्।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मैं से हम तक का सफर हमारी जिंदगी और रिश्तों को कैसे बदल सकता है, आइए इस नए नजरिए को समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, हम ना दीवारों पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन कुदरत जो है वो हमें ब्रिजेस दिखाता है हमेशा। यू नो, इत्तेफाकन है कि इस साल मिलादुन नबी जो है और ओनम जो है वो या तो एक ही दिन होगा या आसपास अगले दिन होगा। और मैं सोच रहा था कि जब ऊपर वाला खुद कैलेंडर पर इन दोनों ब्यूटीफुल फेस्टिवल्स को एक साथ डाल रहा है, तो इंसान कौन होता है कम्युनिटी को अलग करने वाला। हम ज़्यादातर कम्युनिटीज़ में जब रहते हैं ना, तो अस वर्सेस देम वाली फीलिंग होती है, आइसोलेशन वाली फीलिंग होती है। कई बार ऐसा होता है, हम कहीं ना कहीं रिलीजन से या कास्ट से या बहुत सारे मुद्दों से अलग अलग रहते हैं। मिलादुन नबी इज़ द बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट, और ओनम जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है फॉर एब्सोल्यूट इक्वालिटी। तो मैं आपसे जेन्युइनली पूछना चाहता था कि ये अस वर्सेस देम वाली आइसोलेशन वाली फीलिंग कम्युनिटीज़ पर इतनी हावी क्यों है?
4: क्योंकि हम भूल गए हैं कि हम कौन हैं। जो ये सिंपल से आंसर है ना कि मैं कौन हूँ, और इसकी क्लैरिटी न होने के कारण इतना कॉन्फ्लिक्ट है। एक्चुअली हम किसी भी कास्ट रिलीजन कम्युनिटी से बाद में हम उससे जुड़ते हैं, लेकिन पहले हम एक बीइंग है
3: जी।
4: सब एक बीइंग है, ब्यूटीफुल बीइंग है, सोल है। फिर हम अक्वायर करते हैं, हम चाहे बॉडी अक्वायर करते हैं, फिर जेंडर अक्वायर करते हैं, फिर रिलीजन अक्वायर करते हैं, कास्ट कलर अक्वायर करते हैं, और थोड़े समय के बाद हमें लगने लगता है कि जो हमने अक्वायर किया है वो मैं हूँ।
3: सही बात,
4: मुझे ये भूल जाता है कि ये मैंने अक्वायर किया है, और जो मैंने अक्वायर किया है वो मेरी आइडेंटिटी बन जाती है, और जो मेरी आइडेंटिटी है उससे हम अटैच हो जाते हैं। फिर जिस चीज़ से हम अटैच होते हैं हमें लगता है यही राइट है, और फिर हमें लगता है अगर ये राइट है तो दूसरा रॉन्ग है। वहाँ से ये फ्रैगमेंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अगर आप सिर्फ ये रिमाइंडर अपने को दें कि मैं भी सोल हूँ, ये भी सोल है, मैंने एक रिलीजन अक्वायर किया, उसने दूसरा रिलीजन अक्वायर किया, लेकिन दोनों रिलीजन सिखा क्या रहे?
3: पीस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स ऑल।

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: फिल्म मैं सुंदर हूँ से हम अपनी जिंदगी के लिए कौन सा गहरा लेसन सीख सकते हैं, आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कोई भी रिलीजन फॉलो कर ले, लेकिन अगर आप उस रिलीजन की जो बातें हैं उसको अपने जीवन में धारण करेंगे तो सामने वाला किसी भी रिलीजन का होगा लेकिन आपको उसके प्रति जो भाईचारा है, लव है, पीस है, वो आएगा। लेकिन अगर आपने रिलीजन में क्या लिखा है उसको फॉलो नहीं किया तो वो मन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू होता है, फिर वो झगड़े के अंदर बदल जाता है, एंड इट कुड लीड टू अ वॉर आल्सो। सिर्फ इतनी सी भूल, इसलिए वो कहते थे ना, ये नहीं जाना कि मैं कौन हूँ, और अगर ये जान लिया कि मैं कौन हूँ तो सब कुछ जान लिया, तो सारा ही कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। और जो आप इक्वालिटी की बात करें, वो इक्वालिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक आप अपने को सोल नहीं देखते और दूसरे को सोल ब्रदर के रूप में नहीं देखते।
4: क्या बात, बहुत बढ़िया। आपने दो फिल्मों की मुझे याद दिला दी, एक है मैं आज़ाद हूँ जो बच्चन साहब ने प्ले किया था और इंस्पायर्ड बाय फिल्म कॉल्ड मीट जॉन डो, और दूसरी फिल्म है मैं सुंदर हूँ। तो अगर हम अपने आप को सिर्फ ये बोलें कि मैं सुंदर हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं पीसफुल हूँ, जैसे आप कई बार बोलते हैं, मैं सोल हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं आज़ाद हूँ, आई थिंक विल बी गुड, राइट?
3: ये हमारा एक्चुअली स्वधर्म है। वो रिलीजन हम अक्वायर करते हैं, लेकिन जो सोल का रिलीजन क्या है, वो यही है। जैसे हम कई बार कहते हैं सतो प्रधान आत्मा, तो वो शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, खुशी, ज्ञान, पवित्रता, ये हम हैं। चाहे हमने कोई भी जेंडर, कोई भी कास्ट, कोई भी रिलीजन, ये हमारा स्वधर्म है। इट इज द रिलीजन ऑफ द सोल, और यही हम सबको चाहिए। पर एक्चुअली ये हमें चाहिए नहीं है, इसकी अवेयरनेस चाहिए कि ये हम हैं।

0: और ये हमें रेडिएट करना है।
1: सही बात।
0: और बाकी जो हमने अक्वायर किया था वो रिमाइंडर देने के लिए ही था कि आप ये हैं और आपको ये बाकी सबके साथ रेडिएट करना है। लेकिन हम कहीं ना कहीं लेबल्स में इतना फंस जाते हैं और लेबल से जो जेनरेट होती है वो है ईगो, ईगो कॉन्शियसनेस। तो ज्यादातर कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, दो ईगो आपस में टकराती है और ईगो हमेशा यही कहती है कि मैं राइट हूं तो आप रॉन्ग है।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर, एक सवाल है मृणाली जी का। वो लिखती है कि जब जिंदगी में कोई सहारा ना हो, कर्जों का बोझ हो और पुरानी एडिक्शंस पहले से भी ज्यादा ताकत से वापस आ जाएं, तो खुद को कैसे संभालें? और अगर फिर टूटना ही था तो ठीक होने का मतलब क्या था?
3: टूटना क्यों है? टूटता तो वो है जो हार मान चुका है। से जो वो बातें कह रहे हैं जीवन के चैलेंजेस की बात कर रहे हैं। तो जीवन के चैलेंजेस तो सबके जीवन में आते हैं।
2: बिल्कुल।
3: किसी के कम, किसी के ज्यादा, किसी का बीमारी, किसी का धन का पेपर। लेकिन टूटने का मतलब है आप अंदर टूट गए, आपने गिव अप कर दिया। आप गिरे हैं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप गिरकर उठे नहीं है वो बड़ी बात है।
2: सही बात।
3: तो अगर वो टूटने की बात करें तो उसमें दो चीजें चाहिए। एक तो अपनी ताकत, जिसको हम विल पावर कहते हैं
2: जी।
3: लेकिन कभी कभी अगर विल पावर भी काम नहीं कर रही हो तो फिर चाहिए परमात्मा की ताकत
2: जी।
3: और इसीलिए जब आप बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था एक कहानी जिसमें वो कहते हैं कि एक बारी मीरा को बहुत ही गरम गरम दूध दिया गया।
2: अच्छा।
3: और कहते उसको गरम नहीं फील हुआ, लेकिन कृष्ण के मुंह में छाले आ गए।
2: अच्छा।
3: उस कहानी का जो राज ये होता था कि जिनका भगवान से बहुत ज्यादा प्यार है, अगर उनके जीवन में कोई चैलेंजेस भी आते हैं तो उनको सफरिंग नहीं एक्सपीरियंस होती है। बात आई है, बात का सामना आपको करना पड़ेगा। तो वो बात आई है लेकिन सफरिंग भोगना नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा आपका साथी है, सर्वशक्तिवान आपका साथी है। तो आप उसको इनवाइट करें, उसके साथ रिश्ता जोड़ें, अपना बोझ उसको सौंपे, खुद हल्के हों। बोझ सोच का होता है, क्या होगा, कैसे होगा, कर्ज कैसे उठेगा। बोझ उसको सौंप करके मन को हल्का करें, मन को परमात्मा में लगाएं, उससे वो शक्ति लें, और फिर जो आगे करना है वो तो करना ही है।
2: वेरी नाइस।
3: सो व्हाट इज द नेक्स्ट राइट मूव, वो सोच करके करें। लेकिन टूटा हुआ व्यक्ति नहीं आगे बढ़ सकता है ना।
2: वाह, क्या बात है मृणाली जी। आई होप आपको जवाब मिल गया हो। और अगर एक और तरीका आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेने ब्राउन की बहुत कमाल की किताब है, राइजिंग स्ट्रॉन्ग उसका नाम है। अगर आपको मिले तो जरूर पढ़िएगा, उससे भी शायद आपको थोड़ी मदद मिले।
3: परमात्मा कई बार कहता है हिम्मत का एक कदम आपका,
2: 100 कदम हमारा,
3: 100 कदम मदद उसके, लेकिन हिम्मत का एक कदम तो बढ़ाना पड़ेगा।
2: बिल्कुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक और सवाल आया, वो कहते हैं कि जब मैं डीप मेडिटेशन में होता हूं तो अक्सर किसी के मेडिटेशन एरिया में आने से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं, ऐसा क्यों होता है?
3: ऐसा नहीं होना चाहिए। मेडिटेशन का पर्पस है कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, डिस्टर्ब नहीं हो। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है जो हमें डिस्टर्ब करती है कि मैं मेडिटेशन कर रहा था, आपने उस समय टीवी क्यों चलाया, आपने उस समय फोन पर क्यों बात करी। इस वन टाइम समबडी वाज शेयरिंग कि वो भाई भी ऐसे ही वेरी सिमिलर क्वेश्चन कि मैं जब मेडिटेशन करता हूँ उसी समय मेरी वाइफ फोन पर जोर जोर करके अपने सिस्टर से बात करती है। तो फिर उनको कहा, देखो ये आवाज आपको सुनाई दे रही है। कहते कौन सी आवाज? कहते ये जो जोर जोर की आवाज है, तो नीचे एक सब्जी वाला जोर जोर के सब्जी बेच रहा था,
2: लेकिन वो नहीं सुनाई दिया।
3: तो कहते वो तो उसका काम है, वो तो वो करेगा, उसको चिल्लाना पड़ेगा। उस सब्जी वाले का जो काम है आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया था,
2: लेकिन अपनी बीवी के तेज फोन पे बात करना आपने एक्सेप्ट नहीं किया।
3: आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि जब मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ
2: उस समय वो ना करे।
3: सो अगर हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं तो वो कोई हमारी फील्ड में आता है उसके कारण नहीं होते, हमारे मन ने कोई एक्सपेक्टेशन क्रिएट की होती है वो फुलफिल नहीं होती तो हम हर्ट होते हैं, अंदर हो रहे हैं ना डिस्टर्ब. हमारे नेगेटिव थॉट्स हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना.
2: बिल्कुल.
3: तो अपने को याद दिलाएं कि मेडिटेशन का पर्पस ही ये है कि हमें कुछ भी हो, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेडिटेशन, कि इररिस्पेक्टिव सिचुएशन कैसी है, इररिस्पेक्टिव लोगों का व्यवहार कैसा है, इररिस्पेक्टिव वेदर कैसा है, चैलेंजेस कैसे हैं, आप अंदर में काम और स्टेबल है और उस स्टेबिलिटी से आप रिस्पॉन्स करते हैं क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बाकी तो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है.
2: और अगर अभी नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे हो जाएगा. अपने आप को भी वक्त दें और दूसरों पर भी इरिटेट ना हो.
3: जी
2: बहुत बढ़िया.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग शुरू हो चुका है और यहाँ पर तुम्हारी चाय हो, कॉफी हो, ब्रेकफास्ट हो, सब कुछ गर्मा गर्म सर्व होंगी क्योंकि मिर्ची इज हॉट. तुम्हारे मॉर्निंग कम्यूट से लेकर, तुम्हारे ऑफिस मीटिंग से लेकर, तुम्हारा ब्रेकफास्ट बनाने का स्टाइल, तुम्हारा सोने का स्टाइल, तुम्हारा सुबह सुबह उठने का स्टाइल और साथ साथ में तुम्हारा मिर्ची सुनने का स्टाइल, बिकॉज मिर्ची इज हॉट. और आज का फंडा भी बिल्कुल सिंपल है. आज के दिन हम करेंगे थोड़ी सी गॉसिप, बॉलीवुड की बातें, मस्ती, ढेर सारा नॉस्टैल्जिया और वही मॉर्निंग मिर्चीदार एनर्जी तुमको मिलने वाले थ्रू आउट अगले कुछ घंटों तक. मैं तुम्हारे साथ में रहने वाली हूँ. नाम है प्रिसिला, मेरे शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स और मेरा इंस्टाग्राम और एक्स पर नाम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. फॉलो कर लेना और साथ में मुझे तुम मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9033 मिर्ची इज माई number. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड लेट्स रिवाइंड कि आज के दिन पुराने जमाने में क्या हुआ था। स्टार्टिंग विद 1934, अल्कट्राज फेडरल पेनिटेंशियरी रिसीव्ड इट्स फर्स्ट सिविलियन प्रिजनर। हाँ, ये वही अल्कट्राज है, अमेरिका की दी इन फेमस आइलैंड प्रिजन, जहाँ से कोई भाग नहीं सकता था, लेकिन उसके बावजूद सबसे फेमस प्रिजन ब्रेक यहीं से हुआ था। फास्ट फॉरवर्ड टू 1942, एक्ट्रेस हेडी लमार एंड कंपोजर जॉर्ज एंटाइल गॉट अ पेटेंट फॉर फ्रीक्वेंसी हॉपिंग टेक्नोलॉजी। ये कैसा इन्वेंशन था दैट लेटर बिकेम फाउंडेशनल टू मॉडर्न वायरलेस कम्युनिकेशन। सो टेक्निकली हर बार तुम्हारा वाईफाई जब काम करता है, यू हैव हिस्ट्री एंड देम टू थैंक। 1965 में द वॉच रायट बिगैन in Los Angeles, leading to a 6-day of major civil unrest. 1972 में the last US ground combat unit left South Vietnam. 1973 में DJ Kool Herc hosted a back to school party in the Bronx. ये जैम widely consider किया जाता है one of the foundational moments in the birth of hip hop culture. Then comes 1992, the Mall of America opened in Minnesota as the largest indoor shopping mall in the United States. And finally, 2003 May, NATO took command of the International Peacekeeping Force in Afghanistan. That's it for history ka roundup. Main hoon Prisala tumhare saath mein. This is Mirchi Mornings. Want to know me more? Insta aur X par mujhse baat kar sakte ho. Mirchi Pris is my handle name. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033 647244. Stay tuned and stay.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. ये है मिर्ची मॉर्निंग्स. एंड इफ यू आर अ देसी लिविंग इन द यूएस, ये अपडेट तुम्हारे लिए है.
2: गुड मॉर्निंग ग्रेटर मिर्ची लिसनर्स, दिस इज जेसन डोशी फ्रॉम एसडी कैपिटल फंडिंग विद योर एसडीसीएफ मॉर्गेज मार्केट अपडेट. It's been a while for me, so before we get into the update, I'd like to share how excited I am to be back on the radio talking about home buying tips and educating our friends and listeners of Radio Mirchi. Thank you for having me back, and let's get started. The July CPI report.

0: साथ जीतू राज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake, किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: Spiders have free life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने Spider-Man के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज YouTube पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओह आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स पर. अब टाइम है मौसम का हालचाल पता करने का. राइट नाउ वी आर सिटिंग एट 72 डिग्रीज फारेनहाइट. स्काइज जो है वो थोड़ी सी क्लाउडी है, लेकिन इट्स फीलिंग लाइक 73 डिग्रीज फारेनहाइट. बट लिसन, शाम को अराउंड 5 बजे के आसपास रेन इज एक्सपेक्टेड. सो अगर तुम उस टाइम घर पहुंचने वाले होगे, निकल रहे होगे घर के लिए, वर्क खत्म कर रहे होगे या फिर वर्क स्टार्ट कर रहे हो, अम्ब्रेला ले जाना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आज के दिन झमाझम बरसात होने वाली है. अराउंड 16 मिलीमीटर की बरसात फोरकास्ट में है. आज के टेम्परेचर रेंज देख लेते हैं, 70 to 87 डिग्रीज फारेनहाइट है, लेकिन फील होगा 72 से लेकर 89 डिग्रीज फारेनहाइट तक. और ये फील लाइक इस पर डिपेंड करेगा कि ह्यूमिडिटी, सनलाइट और विंड जो है ये मिलकर एक क्या मिश्रण बनाते हैं, और उस मिश्रण को वेदर बोला जाएगा आज के दिन. गुड न्यूज आई हैव दो, यस्टरडे के कंपेरिजन में आज का टेम्परेचर इज नॉट वेरी हाई, इट्स प्रिटी सिमिलर. सो कोई मेजर चेंज नहीं है टेम्परेचर में. आज के दिन भी बाहर निकलोगे तो लेयर के प्लेयर बनकर जाना, क्योंकि सुबह से शाम तक में वेदर काफी फ्लक्चुएट कर रहा है. एंड रेन वाइज लास्ट 24 आवर्स में 0 मिलीमीटर्स का प्रेसिपिटेशन था, और जैसे मैंने बताया अगले 24 आवर्स में वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 16 मिलीमीटर्स ऑफ रेन. सो कॉफी, चाय, सनग्लासेस, सनब्लॉक, SPF 50+++ के साथ ये सब कुछ साथ में ले जाना, और साथ में कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड. एंड ऑफ कोर्स मिर्ची सुनते रहो, मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: You're listening to Mirchi Mornings with me, Priscilla. और अब time आ चुका है around the world की updates जानने का in
2: Mirchi Hour का 3.
1: सबसे पहले Fitch Ratings has kept India at BBB minus with a stable outlook. अब BBB minus सुनकर ऐसा मत सोचना कि इंडिया को स्कूल में needs improvement लिखकर दिया गया है. Simple language में triple B minus यानी कि BBB minus is still investment grade. It means Fitch sees India as a credible borrower. Although there are meaningful risks and stable outlook का मतलब है Fitch doesn't currently expect to change that rating anytime soon. Basically फाइनेंशियल दुनिया में इंडिया का स्टेटस है सब कुछ ठीक चल रहा है देखते हैं आगे क्या होता है. नंबर टू पर इंटरनेशनल गोल्ड प्राइजेस हैव क्रॉस्ड $4,400 एन आउंस टचिंग अराउंड $4,435 देयर हाईएस्ट लेवल इन मोर देन टू मंथ्स. और गोल्ड का एटीट्यूड देखो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा सेटल हो जाए और गोल्ड कह रहा है मैं तो अभी और ऊपर जाने वाला हूँ. राइजिंग अनसर्टनिटी इन द मिडल ईस्ट इज अमंग द फैक्टर्स सपोर्टिंग द move. And lastly, a US federal court has dismissed the criminal charges against Gautam Adani and his nephew Sagar Adani after the US Justice Department decided not to continue the prosecution. The charges dated back to a 2024 case involving alleged bribery and fraud. The dismissal brings the criminal case to a close, though there have also been separate civil proceedings. So that's it for your Mirchi Hour ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla, tumhare saath mein. कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप पर कनेक्ट करना चाहते हो तो 9033 मिर्ची इज माय नंबर दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103, राइट?
1: हाँ.
2: वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000.
1: हाँ.
2: वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
1: नहीं. तो
2: आपने नहीं किया है?
1: नहीं.
2: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
1: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
2: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए. कम से कम मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला? किस पे शक है आपको?
1: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
2: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
1: मैंने 2 पैसे भी निकाले.
2: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
1: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल. ओके
2: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
1: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पे मेरा नाम लिखा है.
2: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं. मुझे नहीं पता. आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए. सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं. सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
1: क्या
2: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
1: किससे बात करनी है? किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं. आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
2: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. मिर्ची फ्रेश माल.
5: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: बस तुम रहते हो।
1: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है, and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो, is what Jeetu Raj will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा, and for God's sake, किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers, फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man Brand New Day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day, but I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने, वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और आप पता करते हैं हमारे गोल्ड का क्या हाल चाल चल रहा है।
2: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड ऑलमोस्ट टचिंग $4,400, $4,390 पर ट्राई ऑन्स इस समय गोल्ड ट्रेड कर रहा है और सिल्वर के प्राइस भी अपवर्ड ट्रेंड पर है। इससे पहले गोल्ड एंड सिल्वर वापस एग्रेसिव अपवर्ड ट्रेंड ले, RajJewels.com के साथ PAM Certified Gold and Silver Bars, 1 ounce, 100 gram, 10 ounces, Kilo Bars, Investment Bar। आइए RajJewels.com के साथ Responsibly Gold में Invest करें। Thank you, Happy Morning to you।
1: And there you have it, Gold का Latest Rate Update सुना तुमने Exclusively on Mirchi Mornings। मेरा नाम है Priscilla, Connect करो मुझसे Insta और X पर। मेरा Handle है Mirchi Pris, That is MIRCHIPRIS। WhatsApp का Number है 9033Mirchi, That's 9033 6 4 7 2 double 4। Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vidva la burka. Milci, burka.
2: हेलो,
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे
3: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं,
2: है?
3: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
2: तो
3: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
2: पूरी
3: नहीं नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे, या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
2: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
3: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
2: ये कॉपी मुझे भी भेजना
3: राजी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया आपका, अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इट्स टाइम टू चेक व्हाट द यूनिवर्स हैज प्लान्ड फॉर यू।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: एरीज यानी कि मेष राशि, आज फोकस घर और फैमिली पर रहेगा। कोई पुराना डोमेस्टिक इशू है, बात करके निपटा लो, ग्रुप चैट में पैराग्राफ लिखकर नहीं। फाइनेंशियल डिसीजंस में थोड़ा सा पेशेंस रखो, जल्दी का काम शैतान का होता है। लकी कलर फॉर यू इज सेज ग्रीन, लकी नंबर इज 6। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज अपना चार्म फुल वॉल्यूम पर रखो, मीटिंग्स हो या फिर पर्सनल कॉन्वर्सेशंस हो, अपनी बात में क्लैरिटी रखो, सिबलिंग्स या नेबर्स के साथ स्वीटनेस मेंटेन करो, देसी मोहल्ला डिप्लोमेसी इज रियल। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 3। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, मनी मैटर्स आर टेकिंग सेंटर स्टेज, बजट चेक करो, सेविंग्स का प्लान बनाओ, बेसिकली बैंक अकाउंट को भी थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, वो दे दो उसे, एंड आज मोटिवेशन मिल सकता है टू फाइनली fix that one health habit you've been ignoring. Lucky color is cobalt blue, lucky number is 8. कैंसर यानी कर्क राशि, मून तुम्हारी साइन में है, सो इंट्यूशन एंड कॉन्फिडेंस आर गेटिंग अ लिटिल अपग्रेड, सेल्फ केयर करो एंड ट्रस्ट दैट गट फीलिंग। पर्सनल ग्रोथ के लिए आज लकी डे है, अंदर की आवाज को एयरप्लेन मोड पर मत डालना। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 2। लियो यानी कि सिंह राशि, आज थोड़ा सा स्लो डाउन करो चैंप, सोशल प्लान से ब्रेक लो, रिफ्लेक्ट करो, रिचार्ज करो, वर्क पे पेशेंस रखो, और बोर्डम में ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड को मेडिटेशन समझो, चेकआउट को नहीं। लकी कलर इज बर्न्ट ऑरेंज, लकी नंबर इज 9। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्गो यानी कन्या राशि, फ्रेंड्स नेटवर्किंग एंड लॉन्ग टर्म गोल्स आर लुकिंग गुड, किसी ग्रुप प्रोजेक्ट या कोलैबोरेशन में जंप इन करो, बस जॉइंट फाइनेंसेस में रिकॉर्ड्स क्रिस्टल क्लियर रखो, फ्रेंडशिप ब्यूटीफुल है, अकाउंटिंग स्प्रेडशीट उससे और भी ज्यादा ब्यूटीफुल। लकी कलर फॉर यू इज लैवेंडर एंड नंबर इज 4। एंड दिस इज राशि जोन पार्ट 1, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, फॉलो मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: वेलकम बैक टू मिर्ची मॉर्निंग्स का राशि जोन पार्ट टू. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: लिब्रा यानी कि तुला राशि, करियर स्पॉटलाइट इज ऑन. लीडरशिप दिखाने का टाइम आ चुका है, सो टेक चार्ज ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट. बॉस से ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखो. माइंड रीडिंग अभी भी लिंक्डइन स्किल नहीं बनी है. लकी कलर इज रॉयल ब्लू. लकी नंबर इज 1. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, एडवेंचर लर्निंग एंड ट्रैवल वाइब्स आर स्ट्रॉन्ग. नया सब्जेक्ट एक्सप्लोर करो, क्लास को ज्वाइन करो या फिर फ्यूचर ट्रिप प्लान करो. ऑब्स्टिकल्स आए तो फियरलेसली फेस देम. तुम स्कॉर्पियो हो, गूगल मैप्स भी तुमसे डायरेक्शन मांगता है. लकी कलर इज क्रिम्सन. लकी नंबर इज 7. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, आज डीप कॉन्वर्सेशन और शेयर्ड फाइनेंसेस का टाइम है. टैक्सेस, जॉइंट मनी या फिर कोई इमोशनल इशू पेंडिंग है तो फेस इट. पुरानी रिस्ट्रिक्टिव हैबिट्स को ब्रेक करने का करेज आ गया है तुम्हें. लकी कलर इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 5. केप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, पार्टनरशिप्स, बिजनेस एंड रोमांस टेक प्रायोरिटी. किसी स्पेशल पर्सन के साथ क्वालिटी वन ऑन वन टाइम स्पेंड करो और ये याद रखो, हर प्रॉब्लम का सलूशन मैं खुद कर लूंगा नहीं होता है. फ्रेंड्स पे लीन ऑन करना अलाउड होता है. लकी कलर इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 11. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, डेली रूटीन, वर्क एंड हेल्थ नीड योर अटेंशन. वर्क स्पेस ऑर्गेनाइज करो, टू डू लिस्ट स्ट्रीमलाइन करो और जो रेस्टलेस एनर्जी है उसको वर्कआउट में डालो. डंबल्स को देखो मत यार, उनको उठाकर यूज भी करो. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक पर्पल. लकी नंबर इज 10. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, तुम्हारी लाइफ में क्रिएटिविटी, रोमांस एंड प्योर जॉय आ चुका है. हॉबी के लिए टाइम निकालो, कुछ आर्टिस्टिक करो, फ्लर्ट करो. बेसिकली लाइफ को सिर्फ एक्सेल शीट मत बनाओ यार. किड्स और पेट्स के साथ थोड़ा सा इमोशनल टाइम आज स्पेंड करो. इट विल हील यू. नॉट दैट यू नीड हीलिंग, बट इट विल बी गुड फॉर यू emotionally. Lucky color is sea foam green. Lucky number is 12. And that's it for Mirchi Rashi Zone Part 2. Stars apni jagah hai. Remember, steering wheel abhi bhi tumhare haath mein hai. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Ye hai Mirchi Mornings. Aur mera Insta aur X ID hai Mirchi Pris, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp par bhi connect kar sakte ho. 9033 Mirchi is my number. 9033 647244. Stay tuned and stay hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स उनका प्यार उनका गुस्सा वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकल्स
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: मिर्ची फ्रेश माल
5: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: एंड अब मेरे जाने का टाइम शुरू हो चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स पर। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और जाने से पहले एक बात बताकर जाती हूँ जो थोड़ी सी हैवी है, क्योंकि कभी कभी ना लाइफ में सुपरस्टार, बिगेस्ट स्टार, सेलिब्रिटीज, उनको भी थोड़ा सा स्टेप अवे करना पड़ता है फ्रॉम व्हाट दे आर डूइंग। दैट्स राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट लायनल मेसी। रिपोर्ट्स से द इंटर मायामी स्टार इज टेकिंग एन इनडेफिनिट ब्रेक फ्रॉम फुटबॉल फॉलोइंग द डेथ ऑफ हिज फादर एंड लॉन्ग टाइम एजेंट होर्हे मेसी। मेसी इज करंटली विथ हिज फैमिली इन अर्जेंटीना एंड देर इज नो कन्फर्म्ड डेट फॉर हिज रिटर्न। इंटर मायामी हैज रिपोर्टेडली गिवन हिम ओपन एंडेड कंपैशनेट लीव without putting pressure on him to get back on the pitch. And honestly, that's the important bit here. Football can wait, goals can wait, matches can wait, fans can wait, everything else can wait. Sometimes life says, right now family comes first. And this is the sad reality of life. Everyone, be it a celebrity, a commoner, a nobody and a somebody, we all have to go through something like this, such as life. So wherever you're listening to me from this morning, maybe take that as a little reminder to call your parents, check in on someone you love, send that message you've been postponing, talk to that friend you've not spoken to in a while, forget all the grudges, because unlike a football match, life doesn't come with an extra time. And with that thought, Mirchi Mornings comes to an end. Main hoon Prisala tumhare saath mein. Thank you for hanging out with me this morning. You made my day much, much, much better. Take care of yourself, stay kind, and keep that Mirchi Desi spirit shining. Bye for now. Milungi tumhe kal, same time, same place par. तब तक के लिए तुम मुझे कनेक्ट करो सोशल मीडिया पर, इंस्टा और एक्स पर मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, दिलीप साहब हो, राज कपूर साहब हो, या फिर हो देव आनंद, ये तीनों ऐसे दिग्गज स्टार्स थे जिन्होंने जम करके ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स की, बिकॉज ऑफ कोर्स जब इन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा तो इंडियन सिनेमा बस स्टार्ट ही हुआ था. लेकिन दीज थ्री पीपल वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जब कलर की बात हुई. जब कलर आने लगा इंडस्ट्री में और कलर एक्सपेंसिव भी बहुत था, तो फिर एक ना ट्रेंड चला था. क्योंकि इट वॉज सो एक्सपेंसिव, तो प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स ऐसा करते थे कि किसी इम्पॉर्टेंट फिल्म का इम्पॉर्टेंट सीन या फिर उसका इम्पॉर्टेंट गाना जो था ना, वो कलर में कर देते थे. अब ऐसे में दिलीप साहब, देवानंद और राज कपूर साहब ने ना पूरी इंडस्ट्री को चेंज करने की ठान ली थी. सो दे डिसाइडेड कि वो बहुत सारी फिल्मों को मना करेंगे और जो फिल्में कलर में होंगी उनको करना शुरू करेंगे. अब ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि ज्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स फिर कोशिश करने लगे थे कि वो कलर में पिक्चरें बनाए. वेल, आज जिस फिल्म की बात होगी वो देव साहब की पहली कलर फिल्म थी. Which film am I going to talk about? ये अभी आपको पता चल जाएगा. बस कुछ गानों के उस पार, मैं हूँ श्रेया, only on पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: भाई साहब, श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल
4: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
4: यही मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
4: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
4: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
4: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
4: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
4: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
4: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
4: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
5: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो?
3: क्या यार?
5: अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
3: कुकड़ों को
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मूवी का नाम है गाइड, जो कि देव साहब की पहली मूवी थी इन कलर। पुरानी जीन्स पे आप हो श्रेया के साथ, और मैं बात कर रही थी कि कैसे देव साहब, राज कपूर साहब और दिलीप साहब ने ठान लिया था कि वो भाई कलर को लेकर के आएंगे इन द इंडस्ट्री, बिकॉज एट दैट टाइम कलर बहुत एक्सपेंसिव था। सो इसीलिए ज़्यादातर पिक्चरों का इम्पोर्टेंट सीन या फिर इम्पोर्टेंट अगर कोई गाना होता है, इम्पोर्टेंट सीक्वेंस होता है, उसको कलर में कर दिया जाता था। बट दीज थ्री लेजेंड्स डिसाइडेड कि भाई अगर इम्पोर्टेंट पिक्चर भी होगी तब भी वो नहीं करेंगे अगर वो ब्लैक एंड व्हाइट में है। इस चक्कर में ज्यादातर प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को ना अगर ये तीन अपनी फिल्म में चाहिए थे तो वो पिक्चरों को कलर करने लगे। तो आज बात हो रही है देव साहब की पहली फिल्म विच वॉज इन कलर, एंड दैट वॉज नन अदर देन हिज ओन फिल्म गाइड। सो गाइड की ना बड़ी मजेदार बातें हैं और कुछ ऐसी इमोशनल बातें हैं ना जो आपके दिल को छू लेंगी, जैसे कि अभी नहीं बताऊंगी, गाने के साथ बताऊंगी। सो कम राइट बैक, मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए,

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
3: हिट गाना।

Congyeon, Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

गाइड फिल्म जब देव साहब बना रहे थे ना, तो ये उनके लिए बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल फिल्म थी. सो नंबर वन, ये उनकी पहली कलर फिल्म थी. एंड दूसरी, इस फिल्म में ही वांटेड एवरीथिंग परफेक्ट, ही वांटेड एवरीथिंग करेक्ट, और इसीलिए उन्होंने अपने फेवरेट कंपोजर एस डी बर्मन साहब को लिया था. अब हुआ ये कि दादा एक्चुअली में उस समय काफी बीमार पड़ गए टू द एक्सटेंट कि उन्होंने खुद देव साहब से कहा कि भाई बहुत टाइम लग रहा है उनको गाने बनाने में और पता नहीं वो कब ठीक हो पाएंगे. तो इसलिए दादा ने उनको रेकमेंड किया कि क्यों ना वो कोई और म्यूजिक कंपोजर को हायर कर लें. लेकिन आपको पता है, देव साहब ने इस बात को एकदम खारिज कर दिया. ही वॉन्टेड कि गाइड फिल्म के जो डेप्थ वाले गाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ एस डी बर्मन बनाए. जब एस डी बर्मन साहब ठीक ठाक होकर के 6 महीने के बाद वापस लौटे, तो पता है उन्होंने कौन सा गाना सबसे पहले बनाया? अभी बताऊंगी. वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जींस.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: साथ जीतू राज, only on मिर्ची, it's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please थिएटर में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर God's sake किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने। वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ, और आज बात हो रही है गाइड की, देव आनंद की पहली कलर फिल्म की। सो आई वाज टेलिंग यू कि कैसे देव साहब ने 6 महीने तक वेट किया था कि दादा यानी एसटी बर्मन साहब ठीक होकर के वापस सेट पे आ जाएं और रिकॉर्डिंग में लग जाएं। एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज कि एसटी बर्मन उस दौरान काफ़ी बीमार पड़ गए थे, इतने बीमार पड़ गए थे कि उन्होंने देव साहब को ये तक रेकमेंड किया था दैट ही कैन गो अहेड विद सम अदर म्यूजिशियन। लेकिन देव साहब को दादा बहुत पसंद थे और उनको पता था कि उन्हीं का म्यूजिक ना इस फिल्म में 4 चांद लगा सकता है। तो जब दादा वापस आए ठीक होकर के, जो पहला गाना उन्होंने बनाया वो पता है कौन सा था? वो था ये गाना जो मैं अब आपको सुनाने वाली हूँ। और ये गाना ना पता है कैसे शूट हुआ है? ये चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे शूट हुआ था और हीरोइन जो है वहीदा रहमान, वो अपने आप को शीशे में देख रही है। ऐसे विजन दिया गया है, उसी शीशे को रखा गया है कहते हैं, जिस शीशे में क्वीन पद्मिनी को अलाउद्दीन खिलजी ने देखा था उस चित्तौड़गढ़ के फोर्ट पे। यही गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू। मैं हूँ श्रेया ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, देवानंद और उनके भाई विजय आनंद ने पहले पता है हसरत जयपुरी साहब को अप्रोच किया था। उनको लगा था कि इस फिल्म के गाने हसरत साहब से लिखवाते हैं। पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ और आज गाइड फिल्म की बात हो रही है, द एवरग्रीन हिट फिल्म। ऑफकोर्स इट इज गाइड, देव साहब की पहली कलर फिल्म भी थी बाय द वे। सो जब म्यूजिक टीम बना रहे थे ना देवानंद एंड उनके भाई विजय आनंद, तो उन्होंने ऑफकोर्स एस डी बर्मन साहब को तो लिया ही था, लेकिन एज अ लिरिसिस्ट दे फर्स्ट वेंट टू हसरत जयपुरी। हसरत साहब के गाने कुछ उन दोनों भाइयों को ना पसंद नहीं आए, मतलब उनको लगा कि शायद गाने थोड़े हल्के हैं। तो देन दे टर्न्ड टू शैलेंद्र जी। अब शैलेंद्र जी को ये तो पता चल गया था कि वो दोनों की दूसरी चॉइस बने। इस बात ने शैलेंद्र जी को काफी हर्ट किया था। फिर आगे क्या हुआ, मजेदार सी कहानी है। वापस आओ श्रेया के साथ, देन आई विल लेट यू नो, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची।
2: मिस्टर गगन वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ। आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 3371033 राइट? वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000। वन सेकेंड सर। आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
3: नहीं तो।
2: आपने नहीं किया है?
3: नहीं।
2: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
3: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
2: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
3: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है।
2: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
3: मैंने 2 पैसे भी निकाले।
2: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
3: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
2: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
3: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है।
2: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे नहीं पता आप मुझे क्या बताए। आप बतमीजी से बात मत करिए।
3: सबको लगा दूंगा लाइन में
2: सर। मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
3: क्या
2: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
3: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
2: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इन दोनों भाई मिलके ये फिल्म बना रहे थे, उन्होंने ना जो म्यूजिक टीम रखी वो पहले थी एसडी बर्मन साहब एंड लिरिसिस्ट के तौर पे हसरत जयपुरी। हसरत साहब के लिरिक्स दोनों भाइयों को कुछ खास पसंद नहीं आए और देव साहब अपनी फिल्म के म्यूजिक के लिए एक्सट्रीमली कंसर्न रहते थे, बिकॉज ही थॉट कि फिल्म का म्यूजिक बहुत काम आता है फिल्म की पॉपुलैरिटी में। तो फिर दे टर्न्ड टुवर्ड्स शैलेंद्र जी। अब शैलेंद्र जी को बाय वर्ड ऑफ माउथ ये तो पता चल गया था कि पहले दोनों भाई गए थे हसरत साहब के पास। इस बात से वो इतने दुखी हुए कि वो फर्स्ट चॉइस नहीं बने दोनों आनंद ब्रदर्स की, कि जब विजय आनंद और देव साहब उनके पास ये फिल्म लेके पहुंचे तो शैलेंद्र जी ने एक ऐसा अमाउंट कोट किया जो पहले कभी किसी लिरिसिस्ट ने नहीं मांगा था। ही थॉट, बिकॉज वो कहते हैं ना वो ईगो क्लैश हो गया, कि भाई अब मैं इतना पैसा मांगूंगा कि ये लोग अपना समूह लेकर के वापस लौट जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है क्या हुआ? देव साहब और विजय आनंद मान गए और पहला गाना, इस मीटिंग के बाद जो पहले गाने का मुखड़ा लेकर के ये दोनों ब्रदर्स वापस गए थे, वाज सो हैप्पी, वो कौन सा गाना था बताऊंगी आपको। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में। अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

only on Radio Mercy, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: और इससे पहले कि विजय आनंद और देवानंद उस मीटिंग से बाहर निकलते, तब तक उनको इस गाने का मुखड़ा मिल चुका था।
1: गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल।
0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड। तो मैं बता रही थी कि कैसे ना देव साहब और विजय आनंद को हसरत जयपुरी साहब के लिरिक्स उस समय बिल्कुल नहीं अच्छे लगे थे फॉर दिस फिल्म। तो देन उनको याद आया कि शैलेंद्र जी के पास चलते हैं। शैलेंद्र जी को ऑलरेडी पता चल चुका था ये बात कि भाई सबसे पहली चॉइस उनकी हसरत जयपुरी थे। तो शैलेंद्र जी ने ना, बिकॉज ही वॉज सो हर्ट कि वो इन दोनों भाइयों की सेकेंड चॉइस बने, उन्होंने ढेर सारा पैसा कोट कर दिया। भाई ईगो तो बीच में आएगा ही, बिकॉज दिल से उनको दुख लगा था। तो ही नेवर थॉट, शैलेंद्र जी को ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि विजय आनंद और देवानंद इतने सारे पैसे उनको देने के लिए मान जाएंगे। जब दोनों मान गए तो उस मीटिंग से निकलने से पहले ये गाने का मुखड़ा शैलेंद्र जी उनको दे चुके थे। यही गाना फ्रॉम द फिल्म गाइड कमिंग अप राइट नेक्स्ट। मैं हूं श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज, जीतू राज, only on मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हाय, माय नेम इज पीटर पार्कर।
3: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। and for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers, फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी।
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने। वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सिर्फ ऐसे गाने के लिए आरडी बर्मन साहब ने इनको कन्विंस किया था कि बस एक बार तबला बजा दीजिए. एंड दिस रिमेन्स द ओनली सॉन्ग इन इंडियन हिंदी सिनेमा जहां पर इन्होंने तबला बजाया. पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ पंडित शिव कुमार शर्मा, उन्होंने इस गाने में, गाइड फिल्म के गाने में तबला बजाया. सो एट दैट टाइम उन्होंने तबला छोड़ दिया था बिकॉज ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन संतूर. लेकिन आरडी बर्मन साहब पंचमदा उनके घर गए और उनको घंटों समझाया कि बस एक ही गाने पे आपका तबला हो जाए, अदरवाइज गाना अधूरा रहेगा. वेल, वो कौन सा गाना है? सैया बेईमान फ्रॉम द फिल्म गाइड. एस डी बर्मन साहब की धुन है, शैलेंद्र जी के लिरिक्स हैं, लता जी की आवाज है और तबला बाय पंडित शिव कुमार शर्मा. अब नेक्स्ट मैं हूं श्रेया ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: हेलो
2: भाई साहब, श्रीनिवास पुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल
2: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कम्प्लेट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कम्प्लेट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कम्प्लेट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है
3: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जब विजय आनंद और देव आनंद साहब ने ऑथर आर के नारायण से बात की तो उन्हें पता चला द गाइड जो उन्होंने किताब लिखी थी वो एक्चुअली में रियल लाइफ इंसिडेंट पे बेस्ड थी. सो आर के नारायण ने उनको बताया कि द प्लॉट ऑफ द नॉवल वॉज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द आउटब्रेक एंड अ ड्रॉट प्रॉब्लम दैट टुक प्लेस उनके खुद के होम टाउन में जो कि मैसूर में था. सो वहाँ पे एक महीने तक करीब पानी नहीं बरसा था और लोगों को प्यास के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा था. एंड देन ही सेड कि एक्चुअली में ये हुआ था कि म्यूनिसिपल काउंसिल ने डिसाइड किया था कि वो ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे और इसलिए अ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बहुत सारी प्रार्थनाएं और रिचुअल्स कर रहे थे वो रिवर कावेरी के बैंक पे जा कर के बैठे और वहाँ पे जब उन्होंने प्रेस की तो 12th डे इट एक्चुअली रेन्ड. इसी एक बात को द गाइड बुक से उठा करके इसमें लव स्टोरी को थोड़ा पिरो करके इन दोनों ब्रदर्स ने, द आनंद ब्रदर्स विजय आनंद एंड देव आनंद ने द गाइड में पेश किया. लेकिन आपको क्या लगता है, ये फिल्म चली थी? वेल अभी बताऊंगी. श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ऑलमोस्ट पूरी इंडस्ट्री इनवाइटेड थी फॉर द प्रीमियर ऑफ दिस फिल्म, लेकिन किसी ने भी आकर के ना विजय आनंद को मूवी देखने के बाद कंग्रेचुलेट नहीं किया. इट लेफ्ट हिम हार्ट ब्रोकन. पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ. लोग ना डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि विजय आनंद और देवानंद ने इतनी ऑफ बीट फिल्म बनाई है, और उस टाइम पे लोगों को ना इस फिल्म का क्लाइमैक्स नहीं समझ में आ रहा था. पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म गाइड. वेल, कहते हैं कि जब ये मूवी थिएटर में खुली तो बहुत ही, मतलब जब खुली थी तब तो भाई बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस पे रिस्पॉन्स था, पर धीरे धीरे ऑडियंस कम होने लगी. बट आफ्टर अ वीक इस फिल्म की ऑडियंस फिर बढ़ने लगी, एंड देन इट वेंट ऑन टू बिकम ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स, एंड इट वन 7 फिल्म फेयर अवार्ड्स. ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट मूवी गाइड. पुरानी जीन्स पे मैं हूं श्रेया. कम बैक राइट हियर.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Oh, K-Dance, Spider-Man Brand New Day आ गई है, and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो, is what Jeetu Raj will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। And for God's sake, किसी से भी स्टोरी मत सुनो, don't take any spoilers, फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man Brand New Day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओह, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने। वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स पे आप श्रेया के साथ एंड इट्स टाइम फॉर मी टू गो। लेकिन जाने से पहले आपको तो पता ही है कि गड्डी में बैठना होता है और दूर हाईवे तक मेरे साथ जाना होता है। ऑलराइट, आज का मेरा हाईवे हिट ना उन लोगों पे है जो खुशी में बहुत खुश हो जाते हैं और गम में ना बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। सो मेरी मम्मी हमेशा एक बहुत अच्छी बात कहती हैं कि बहुत खुशी आपके दिमाग पे नहीं चढ़नी चाहिए और दुख आपके दिल पे नहीं चढ़ना चाहिए, बिकॉज ये तो जीवन है।
1: यही है
0: रंग रूप, थोड़े गम है थोड़ी खुशियाँ। On that note, this is Shreya signing off. I'll meet you tomorrow.

0: 10th of August, यानी बीते कल से इंडियन फैमिली का हर दूसरा सदस्य एक साथ टीवी स्क्रीन के सामने नजर आ रहा है।
1: श्रुति, मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: क्योंकि बाबू मोशाय शो ही कुछ ऐसा है। नाम है इसका कौन बनेगा करोड़पति। दिस टाइम इट इज द 18th एडिशन, जिसके प्रीमियर एपिसोड पे अपनी अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म बटवारा 1947 को प्रमोट करने के लिए प्रीति जिंटा, सनी देओल और उनके बेटे करण देओल नजर आए। The movie is set to release on the 14th of August, जिसके promotions full speed में चल रहे हैं। बाकी मैंने ऐसा इसलिए बोला कि भाई इंडियन फैमिली का हर सदस्य टीवी स्क्रीन्स के आगे नजर आएगा इस शो के लिए, क्योंकि मैंने तो अपने आसपास यही होते देखा है यार। केबीसी की शुरुआत हुई थी साल 2000 में, 3rd of July was the date। And honestly, इस शो के लिए मेरे फैमिली का हर मेंबर अपने आप को उस वक्त तक फ्री कर लेता था कि भाई सब साथ बैठ के ये शो देखेंगे और जो स्क्रीन पे सवाल आ रहे हैं उसके बेसिस पे अपने इंटेलिजेंस को भी आंकेंगे। तो एक बार फिर से तैयार हो जाइए सदी के महानायक बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन को कौन बनेगा करोड़पति के हॉट सीट्स को होस्ट करते हुए। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na fiet bala burka. Milci burka.
1: Hello.
2: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट?
1: हाँ।
2: One second, sir. सर, आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000।
1: हाँ।
2: One second, sir. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
1: नहीं तो।
2: आपने नहीं किया है?
1: नहीं।
2: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
1: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
2: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाला, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
1: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है।
2: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
1: मैंने 2 पैसे निकाले।
2: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
1: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
2: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
1: मुझे नोट लेके जा रहा है, उस पर मेरा नाम लिखा है।
2: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं। मुझे नहीं पता आप
1: ठीक बोल रहे हो, वहीं आके बजाऊंगा।
2: आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए। सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी, स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं। सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
1: क्या
2: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
1: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं, आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
2: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है, नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। फोर्थ ऑफ सितंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली मच अवेटेड मिर्जापुर द मूवी से चार नए स्ट्राइकिंग पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं कालीन भैया, मुन्ना भैया, गुड्डू पंडित एंड बबलू पंडित के। बाकी मूवी का ट्रेलर आने वाला है 11th ऑफ अगस्त, यानी कि आज, और जब मैं आपसे ये बातचीत कर रही हूँ क्या पता अभी आ भी गया होगा। बाय द वे, द मूवी इज सेट टू रिलीज इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, दैट इज हिंदी एंड तेलुगु, सो मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इंडिया में हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है और अब तक तो इसने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की बॉक्स ऑफिस कमाई कर ली है। कूडोज टू द क्रेज ऑफ इंडियन फैंस। टॉक्सिक गीत मोहनदास डायरेक्टोरियल अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड यश स्टारर फिल्म का ट्रेलर इज हियर, एंड भाई अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स तो बिल्कुल लग रही है मूवी। फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है जिसमें यश के साथ साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी बसंत और अक्षय ओबेरॉय जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। एंड मेरे लिए हाईलाइट इज यश का डबल रोल, एक उनके पापा का और एक उनके बेटे का। बट उससे भी ज्यादा ट्रेलर देखने के बाद व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट इज कियारा आडवाणी। ये बात और है कि हिंदी डबिंग उनकी काफी वाहियात की गई है, बट जो कैरेक्टर आर्क मिला है बंदी को, आई एम श्योर शी इज गोना किल इट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हूँ आप और मैं बात कर रही हूँ अबाउट द मिर्ची फिल्म ची गेम। बाबू मोशाय आपके दिमाग के घोड़े बड़े गलत गलत डायरेक्शन में दौड़े। एनीवे उनको वापस लेकर आइए और ड्रिल समझिए। आपको मेरे इंस्टा डीएम में जाके अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत कर सकूँ।

0: जो है वो गैंगस्टर होते हैं.
1: सिंग इज किंग.
0: ग्रेट. सिंग इज किंग में हैप्पी कौन है?
1: हैप्पी अक्षय कुमार.
0: अक्षय कुमार का किसको कोल बिठाने का जी करता है?
1: कटरीना कैफ.
0: ग्रेट. कटरीना कैफ की किस फिल्म में उनके भाई डॉन होते हैं?
1: वेलकम.
0: वेलकम में कौन है जो किसी दिन ब्रश उठाता है तो गन नहीं उठाता?
1: मजनू भाई.
0: हु इज?
1: अनिल कपूर.
0: ग्रेट.
1: अनिल कपूर.
0: अनिल कपूर किस फिल्म में रमता जोगी है?
1: ताल.
0: यस, यू आर राइट. ताल में अपने सावरिया को ताल से ताल मिलाने को कौन बोलता है?
1: ऐश्वर्या राय.
0: बहुत बढ़िया. ऐश्वर्या राय नर्स किस फिल्म में बनी है?
1: ओह गॉड,
0: दिस इज अ ट्रिकी वन.
1: आई कांट रिकॉल मी.
0: चलो नेवर माइंड, बट आपने इस गेम को जिस लेवल तक पहुंचाया है उसके लिए आपके अंदर के फिल्मची को ये टैग तो मिलना बनता है.
2: मिर्ची फिल्मची.
0: तो भाई इसके आगे का गेम अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स ऑल.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स उनका प्यार उनका गुस्सा वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: तेरा क्या होगा कालिया
4: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार
3: अब मिर्ची का
5: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं मिर्ची फिल्म ची गेम की बात कर रही हूँ बाबू मोशा। हेलो जी हाय। और आज इस गेम की शुरुआत हुई थी सौम्या से, हु गॉट स्टक एट अ पॉइंट। लेकिन उनके आगे उस गेम को कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं करण। क्या आपके पास टाइम है? क्या आप तैयार हैं?
3: हाँ है।
0: ये जो उत्साह है आपके हाँ में मुझे बहुत अच्छा लगा। सो सौम्या ने इस गेम की शुरुआत की थी। सो शी गॉट स्टक एट अ पॉइंट जहाँ मैंने उनसे पूछा था ऐश्वर्या राय किस फिल्म में नर्स बनी है।
3: ऋतिक रोशन वाली ही मूवी है जिसका नाम है गुजारिश।
0: क्या बात है, गुजारिश में बीमार मजिशियन कौन है?
3: ऋतिक रोशन।
0: बहुत बढ़िया। ऋतिक रोशन किस फिल्म में शाहरुख खान के सौतेले भाई बने हैं?
3: कभी खुशी कभी गम।
0: यस, कभी खुशी कभी गम में उनको लड्डू कौन बुलाता है?
3: करीना कपूर।
0: करीना कौन सी फिल्म में क्रॉस बॉर्डर लव करती हैं?
3: रेफ्यूजी।
0: यस, रेफ्यूजी में मेल लीड कौन है?
3: अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन एसीपी जय दीक्षित किस फिल्म में बने हैं?
3: धूम, धूम 1, 2 और 3।
0: क्या बात है, धूम में चोर कौन है?
3: जॉन अब्राहम।
0: जॉन अब्राहम की फिल्म जिसमें वो रॉ एजेंट से टेररिस्ट में तब्दील हो जाते हैं?
3: पठान।
0: बहुत बढ़िया। पठान में असली रॉ एजेंट कौन है?
3: शाहरुख खान।
0: शाहरुख खान वायलिन किस फिल्म में बजाते हैं?
3: मोहब्बतें।
0: मोहब्बतें में गुरुकुल के सड़े हुए प्रिंसिपल कौन है?
3: अमिताभ बच्चन।
0: अमिताभ बच्चन किस फिल्म में अपने रियल बेटे के बेटे बने हैं?
3: पा।
0: पा में औरों की माँ कौन है?
3: विद्या बालन।
0: विद्या बालन हवेली में छिन छिन छिन किस फिल्म में करती हैं?
3: भूलभुलैया।
0: क्या बात है, आप हमारे सेकंड मिर्ची फिल्मची बन चुके हैं सर। मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू।
3: थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। मैं बात कर सकता हूँ आपके साथ?
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
3: जी। एक्चुअली क्या, मैं आपका ये प्रोग्राम आपका सुन रहा था रेडियो पे व्हाइल आई वाज ड्राइविंग अ कार।
0: Yes.
3: तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका गेम, इंटरेस्टिंग था, तो तभी के तभी मैंने डीएम कर दिया आपको राइट, कि जब भी मौका मिलेगा तो मुझे भी पार्ट लेना है राइट, बिकॉज आई लाइक दिस काइंड ऑफ क्विज। तो आपका जो आइडिया है वो भी बहुत बढ़िया, मैं उसके लिए आपको भी अप्रिशिएट करना चाहूंगा।
0: हाउ स्वीट सर, दैट मींस अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच।
3: थैंक यू मैम।
0: ऑल राइट, तो इतना मस्त इस गेम को जो कम्प्लीट किया है आपने उसके लिए आपके अंदर के भी फिल्मची को ये टैग देना तो बनता है।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई हमारा ये गेम सुन के अगर आपके अंदर के फिल्मची कीड़े को फोमो हो रहा है देन वरी नॉट, ये गेम कल वापस आएगा। राइट इट ऑन मिर्ची, मैं हूँ आपके साथ श्रुति। इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
2: हेलो,
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे हैं
3: राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं,
2: है?
3: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
2: तो,
3: हाँ वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
2: पूरी
3: नहीं, नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
2: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
3: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
2: ये कॉपी मुझे भी भेजना
3: राजी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया आपका, अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप इसलिए।
2: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट, इट्स पटा। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

0: हिंदी फिल्में सिर्फ कहानियों की वजह से नहीं चलती।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो माय डियर बाबू मोशाय, आपने ये नोटिस तो किया ही होगा कि फिल्में सिर्फ उसके प्लॉट की वजह से नहीं बट बहुत सारी अलग अलग चीजों की वजह से अच्छी बनती है। वो म्यूजिक हो, बैकड्रॉप हो, एक्टर्स हो, या फिर जो कॉस्ट्यूम वो पहन रहे हैं वो हो। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीजें जो एक्टर्स ने फिल्मों में इस्तेमाल की उनको लेटर ऑन ऑक्शन किया गया और उस फंड को चैरिटी के लिए यूज किया गया। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ उन्हीं चीजों की बात कर रही हूँ। वे लिस्ट में सबसे पहले हमने बात की फिल्म लगान से आमिर खान के बैट के बारे में, और अब नंबर दो पे बात करते हैं फिल्म देवदास से माधुरी दीक्षित के लहंगा के बारे में। सो ये फिल्म आई थी इन द ईयर 2002, डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली, जिसमें शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ लीड रोल्स में थे। और आपको वो गाना याद होगा, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, हंजी मार डाला। तो इस गाने में जो लहंगा पहन रखा है माधुरी दीक्षित ने, दैट ग्रीन एंड गोल्ड कॉम्बिनेशन वाला लहंगा, उसको ऑक्शन पे डाला गया था एंड फाइनल बिड फॉर द सेम वॉज 3 crores। कैन यू बीट दैट? चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर तीन पे बात करते हैं फिल्म ओ माय गॉड से अक्षय कुमार के सूट के बारे में। वेल ये फिल्म आई थी इन द ईयर 2012, जिसको उमेश शुक्ला ने डायरेक्ट किया था। एंड इस फिल्म का एक सीक्वेंस है जहां अक्षय कुमार एक काले रंग के सूट में नजर आते हैं। वेल इस सूट को लेटर ऑन एक जायंट रिटेल साइट पे ऑक्शन किया गया था फॉर 15 lakh, और इस अमाउंट को चैरिटी के लिए यूज किया गया। सो या फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे कमाई नहीं करती, लोगों का प्यार भी कमा जाती हैं। वेल ऐसी ही दो और चीजों की बात बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू एंजॉय द सॉन्ग्स राइटेड ऑन मिर्ची विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, जिसका नाम है श्रुति।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: 142,000 का टॉवल।
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: वेल माय डियर बाबू मोशा, ये कोई सोने का टॉवल नहीं है, बट इस टॉवल को सलमान खान ने इस्तेमाल किया था। सो बेसिकली आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी चीजों की बात कर रही हूँ जिसको सितारों ने फिल्मों में यूज किया, लेकिन उसके बाद उसको ऑक्शन करके फंड इकट्ठा किए गए और वो चैरिटी के लिए यूज हुए। वेल, इस लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट फिल्म लगान से आमिर खान के बैट के बारे में, नंबर दो में वी टॉक्ड अबाउट देवदास से माधुरी दीक्षित के लहंगा के बारे में, नंबर तीन में हमने बात की फिल्म ओ माय गॉड से अक्षय कुमार के सूट के बारे में। अब नंबर चार पे बात करते हैं फिल्म मुझसे शादी करोगी से सलमान खान के टॉवल के बारे में। भाई, एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए गाना किसको याद नहीं है, और उसका वो टॉवल डांस कौन भूल सकता है। बस ये जो टॉवल इस्तेमाल किया गया था इस फिल्म में, वो एक ऑनलाइन पोर्टल पे ऑक्शन किया गया and it was sold for a whooping amount of 1,42,000. खैर, लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शम्मी कपूर सर के जैकेट के बारे में फ्रॉम द फिल्म जंगली। हाँ जी, वो गाना याद है, चाहे कोई मुझे जंगली कहे टाडाडा। तो बस ये जो गाना है, इसमें शम्मी कपूर साहब ने जो जैकेट पहन रखी है ना, वो भी ऑक्शन हुई थी। 80,000 रुपीज में बेचा गया एंड रिपोर्ट्स क्लेम दैट इस जैकेट को हमारे इंडस्ट्री के परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने खरीदा था। सो या, फिल्में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पे ही नहीं बट लोगों के प्यार की कमाई भी कर जाती हैं। चलो अभी मैं आपको अच्छा गाना सुनाती हूँ और आपका प्यार कमाने की कोशिश करती हूँ। राइट हियर ऑन मिर्ची, यू आर ट्यून्ड इन विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति।

0: साथ जीतूराज only on मिर्ची it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: हर दूसरा गाना सुपर हिट ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। फोर्थ ऑफ सितंबर को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने वाली मच अवेटेड मिर्जापुर द मूवी से चार नए स्ट्राइकिंग पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, कालीन भैया, मुन्ना भैया, गुड्डू पंडित एंड बबलू पंडित के। बाकी मूवी का ट्रेलर आने वाला है 11th ऑफ अगस्त, यानी कि आज, और जब मैं आपसे ये बातचीत कर रही हूँ क्या पता अभी आ भी गया होगा। बाय द वे, द मूवी इज सेट टू रिलीज इन टू डिफरेंट लैंग्वेजेस, दैट इज हिंदी एंड तेलुगु, सो मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इंडिया में हॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन चुकी है और अब तक तो इसने 400 करोड़ रुपए से ज्यादा की बॉक्स ऑफिस कमाई कर ली है। कूडोज टू द क्रेज ऑफ इंडियन फैंस। टॉक्सिक, गीत मोहन दास डायरेक्टोरियल अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड यश स्टारर फिल्म का ट्रेलर इज हियर, एंड भाई अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स तो बिल्कुल लग रही है मूवी। फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होने वाली है जिसमें यश के साथ साथ नयनतारा, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और अक्षय ओबेरॉय जैसे एक्टर्स नजर आने वाले हैं। एंड मेरे लिए हाईलाइट इज यश का डबल रोल, एक उनके पापा का और एक उनके बेटे का। बट उससे भी ज्यादा ट्रेलर देखने के बाद व्हाट आई एम एक्साइटेड अबाउट इज कियारा आडवाणी। ये बात और है कि हिंदी डबिंग उनकी काफी वाहियात की गई है, बट जो कैरेक्टर आर्क मिला है बंदी को, आई एम श्योर शी इज गोना किल इट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: गुड बॉय बन जाता हूँ।
1: उड़ती है खबरें लेता ना स्ट्रेस। गेम का कार्ट ऑन टू द नेक्स्ट। हो प्लेन है प्राइवेट लाइफ है ब्लेस। मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा ना मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की जब से लड़की को चस्का लगा।

दोस्तों ट्यूसडे का काम होता है बस लाइफ को थोड़ा सेटल कर देना। मंडे ने जो झटका दिया, ट्यूसडे आके बोलता है कि ठीक है भाई अब सांस ले लो। शाम शाम का लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और अगर आज का दिन ड्रामेटिक नहीं था तो ऑनेस्टली दैट इटसेल्फ इज अ विन, क्योंकि ट्यूसडे ना एक्साइटमेंट के लिए नहीं बैलेंस के लिए होता है। थोड़ा काम, थोड़ा रूटीन, थोड़ा नॉर्मल सी। तो आप भी बताओ दोस्तों, आज का दिन हैवी था या मैनेजेबल? डीएम ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI और आपकी ट्यूसडे की वाइब शेयर करो। और आपकी ट्यूसडे की वाइब को मैच करने वाला ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, buscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La virtual la burga. Mirchi, burga.
1: Hello.
2: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000. वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
1: नहीं तो.
2: आपने नहीं किया है?
1: नहीं.
2: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
1: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
2: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम. मुझे पता चला, मुझे ऐसे पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
1: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है.
2: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
1: मैंने 2 पैसे निकाले.
2: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
1: मैंने कोई पैसा निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
2: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. मुझे क्या पता कौन लेके गया सर.
1: मुझे नोट लेके जा रहा है, उस पर मेरा नाम लिखा है.
2: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं. मुझे नहीं पता आप.
1: ठीक बोल रहे बजाऊंगा.
2: आप मुझे क्या बताए? आप बदतमीजी से बात मत करिए.
1: सबको लगा दूंगा लाइन में.
2: सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं. सर ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
1: क्या
2: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
1: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में. 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
2: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. मिर्ची फ्रेश माल.
5: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 rupee ट्रायल पैक नाउ।
1: कुछ फिल्मों का नाम सुनते ही उनकी कहानी नहीं उनके एहसास याद आ जाते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज एक ऐसी मूवी की बात हो रही है, आवारापन। बॉलीवुड के उन फिल्म्स में से है जिसे वक्त के साथ लोगों ने और ज़्यादा प्यार दिया। डार्क इमोशन, सोलफुल म्यूजिक और वो इमरान हाशमी का एरा यार, जब हर फिल्म के गाने ना सीधा प्लेलिस्ट में परमानेंट जगह बना लेते थे, क्योंकि वो गाने सिर्फ हिट्स नहीं होते थे, वो लेट नाइट ड्राइव्स, हेडफोन्स और अपनी ही दुनिया का एक साउंड ट्रैक बन जाते थे। और अब जब अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये आवारापन सुनाई देता है ना, तो लगता है कि जैसे एक नई आवाज़ उन कहानियों को फिर से महसूस करने का मौका दे रही हो। क्योंकि कुछ मेलेडीज़ की खूबसूरती ही यही होती है कि जनरेशन्स बदल जाती है लेकिन इमोशंस वही रहती है। वैसे आप भी बताइए दोस्तों कि अगर मैं आवारापन बोलूँ तो सबसे पहले आपको उस फिल्म का कौन सा गाना या मोमेंट याद आता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए एक ऐसी आवाज जो पुरानी यादों को नए अंदाज में छू जाती है, अरिजीत सिंह की आवाज में सुनते हैं ये आवारापन, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार कितने सारे गाने बनते हैं, कितने सारे एल्बम्स बनते हैं, लेकिन कभी कभार एक ऐसा एल्बम आ जाता है ना जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता है और आज भी उतना ही टाइमलेस है जितना तब जब रिलीज हुआ था तब था। और आज जिस एल्बम की बात हो रही है दैट इज नन अदर देन रॉक स्टार। जी हाँ, क्योंकि इस एल्बम ने एक ऐसा गाना दिया था हमें जो सिर्फ गाना नहीं था, एक रेबेलियन बन गया था। रॉक स्टार का सड्डा हक बना था हर यूथ का एक्सप्रेशन, क्योंकि इम्तियाज अली ने ना तब ए आर रहमान से कहा था कि मुझे एक ऐसा गाना चाहिए जो जॉर्डन की आग को जला दे, और मोहित चौहान ने इसमें अपनी रॉक वॉइस का मैजिक छोड़ा था, और रणबीर कपूर की जो रॉ एनर्जी थी ना इसने इस गाने को कल्ट बना दिया था। वैसे तो यार ये गाना आज भी जब बजता है तो लगता है कि अंदर से कोई चिल्ला रहा है, मतलब मुझे भी कुछ कहना है, अपने दिल की भड़ास बाहर आ जाती है। तो अगर आपको भी ये गाना पसंद है और आपके भी दिल में इस गाने ने जगह बनाई है तो चलिए आज बजाते हैं सड्डा हक फ्रॉम द वन एंड ओनली एल्बम विच इज स्टिल टाइमलेस, रॉक स्टार बाय ए आर रहमान। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अदर एल्बम दैट यू एब्सोल्यूटली लव विच इज स्टिल टाइमलेस। टेल मी ऑन इंस्टा एट आर जे मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। तो फुल वॉल्यूम कीजिए क्योंकि सड़ा हक बचने ही वाला है राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा. And for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers. फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी.
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal अर्थात Frank Castle aka Punisher and Tom Holland अर्थात Peter Parker जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

कुछ लोगों को देखते ही ना लगता है कि इन्हें अलग दिखने के लिए कभी एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ते होंगे। वो कहते हैं ना, सम थिंग्स शाइन विदाउट ट्राइंग। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी किसी की स्माइल, कभी उनका कॉन्फिडेंस, तो कभी बस उनकी प्रेजेंस। और वही बात चीज़ों पर भी लागू होती है। मतलब कुछ चीज़ें ना ट्रेंड्स के साथ नहीं चलती, वो हर दौर में अपनी चमक खुद लेकर आती है। और शायद इसीलिए डायमंड्स को सिर्फ ज्वेलरी नहीं, टाइमलेस एलिगेंस कहा जाता है। और अगर आप भी अपने कलेक्शन में वो हमेशा वाली चमक ऐड करना चाहते हो तो तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, अवेल अप टू 25% ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, और ओल्ड गोल्ड अबाव 18 कैरेट एक्सचेंज करने पर 0% डिडक्शन। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। और दोस्तों मुझे भी बताना कि आपके हिसाब से किसी इंसान की सबसे खूबसूरत क्वालिटी क्या होती है, उनकी स्माइल, उनका कॉन्फिडेंस या उनका काइंडनेस। टेल मी ऑन इंस्टाट आरजेमर्जी सिद्धि SIDDHI। और तब तक एक ऐसा गाना सुनते हैं जिसकी चमक कभी पुरानी नहीं होती। Only on Mirchi, it's hot.

एक फ्रीडम ऐसी भी जो किसी कैलेंडर पे नहीं लिखी होती। शम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और वो फ्रीडम है जो मन करे वो पहनने की फ्रीडम। याद है वो टाइम जब फैमिली फंक्शन से पहले मम्मी बोलती थी कि ये पहन लो ये अच्छा लगेगा, और हमारा जवाब होता था नहीं मुझे तो वो पहनना है, क्योंकि अपनी मनपसंद चीज पहनने का भी एक अलग ही मजा होता है, क्योंकि स्टाइल शायद हमारी पर्सनालिटी का सबसे फन एक्सप्रेशन होता है, और हर एक का अपना अपना स्टाइल होता है, कभी ट्रेडिशनल कभी मॉडर्न कभी सिंपल और कभी फुल मेन कैरेक्टर मोड। और इस आजादी सीजन अपनी स्टाइल को चूज करने की फ्रीडम को इडन रो भी सेलिब्रेट कर रहा है। अगस्त 6 से 16 तक एंजॉय फ्लैट 35% ऑफ ऑन अपैरल फॉर मेन वुमेन एंड किड्स, और फ्लैट 10% ऑफ ऑन ऑल द फ्रेग्रेंसेस। विजिट देयर फ्लैगशिप स्टोर इन नॉर्थ ब्रंसविक न्यू जर्सी या नेशन वाइड शॉप कीजिए एट us.edenrobe.com। ईडन रोप, अ लीगेसी ऑफ स्टाइल। और दोस्तों, अगर आपकी पर्सनालिटी एक बॉलीवुड कैरेक्टर होती तो कौन सी होती जरूर बताना। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और फिर एक ऐसा गाना उस मेन कैरेक्टर एनर्जी के नाम, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. Na virtuala murga.
1: Mirchi, murga. Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर आया है, इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
1: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: वो कहते हैं ना, बगल में छोरा और गांव में ढिंडोरा। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी कभी हम जिस चीज की तलाश बाहर करते हैं उसकी वैल्यू पहले से ही हमारे पास होती है, बस हमें उसका एहसास नहीं होता। वैसे ही घर भी कई लोगों के लिए सिर्फ रहने की जगह नहीं होती, एक फाइनेंशियल असेट भी होता है। और उसकी ज़रूरत पड़ने पर उस असेट को किस तरह से स्मार्टली यूज़ किया जा सकता है, उसके भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं। चाहे एजुकेशन हो, बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो, या फिर कोई और इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल, ऐसे ऑप्शंस को किस तरह से यूटिलाइज किया जाए, उसी के बारे में बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: Authentic, original, and better than our right.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज बात हो रही है एक ऐसे टाइमलेस एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना दिल को छू जाता है। और वो जो टाइमलेस एल्बम है दैट इज नन अदर देन रॉक स्टार बाय ए आर रहमान। और यार उस एल्बम का एक ऐसा गाना है जो सिर्फ एक लॉस्ट सोल के लिए नहीं लेकिन हर उस इंसान के लिए है जो अपने घर को ढूंढ रहा है। इम्तियाज अली ने गाया हुआ नादान परिंदे घर आ जा, इस गाने को ना फिल्म का इमोशनल एंकर बनाया था। ए आर रहमान साहब ने इसमें सूफी और रॉक का एक ऐसा ब्लेंड दिया था कि ये जो गाना है जॉर्डन के सफर का टर्निंग पॉइंट बन गया था। और मोहित चौहान की आवाज, उफ, एक दर्द जो सीधा दिल में घुस जाता है। तो यार ये गाना सुनते ही ना एक अजीब सा होम सिकनेस महसूस होता है, चाहे घर पास हो या दूर। तो अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है तो चलिए आपके ही लिए आज प्ले कर रही हूँ नादान परिंदे घर आजा। और मुझे जरूर बताना कि रॉक स्टार का ये गाना क्या आपका भी फेवरेट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। लेकिन अगर और भी कोई गाना आपका फेवरेट है फ्रॉम द मूवी रॉक स्टार, जल्दी से मुझे इंस्टा कीजिए। और तब तक के लिए रॉक स्टार का नादान परिंदे घर आजा राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: This is something

0: साथ जीतू राज Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you. Kyunki is film mein kahi chhoti-chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahi bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahi aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेक बैटनो, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, aka Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी

0: फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओह आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने। वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना दिल को छू जाने वाला है। और आज का जो ये एल्बम है यार, ये अभी भी इतने सालों बाद भी टाइमलेस है। बात हो रही है रॉक स्टार एल्बम के बारे में, कंपोज बाय AR रहमान। और इस एल्बम में तो यार वैसे तो सारे गाने अमेजिंग है, लेकिन एक ऐसा गाना भी है जो सिर्फ सुकून ही नहीं देता, रूह तक को छू जाता है। निजामुद्दीन दरगाह में शूट हुआ कुन फाया कुन, ये जो गाना है ना, असली कव्वाल के साथ रिकॉर्ड किया गया था। AR रहमान ने खुद कहा था कि ये जो कंपोजिशन है वो बहुत ही डिवाइन है। और मोहित चौहान, AR रहमान और जावेद अली की ट्रिनिटी ने इस गाने को ना सोल थेरेपी बना दिया था। वैसे तो यार ये जो गाना है चल पड़ता है जब जिंदगी थोड़ी रुक जाए और हर बार दिल को हल्का कर जाता है। तो अगर आज की शाम दिल थोड़ा घबराया हुआ है या बस थोड़ा वक्त अपने लिए चाहिए ना, तो कुन फाया कुन ये जो गाना मैं आपके लिए प्ले करने वाली हूँ वो सुन लेना, और मुझे ज़रूर बताना कि ऐसी कौन सी लाइन है इस गाने की जो आपको टच करती है। टेल मी ऑन इंस्टेट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और रॉक स्टार का आपका फेवरेट गाना है वो कौन सा है वो भी मुझे जरूर बताना। और तब तक के लिए कुन फाया कुन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज हमारी बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना दिल में ना एक अलग ही जगह कर देता है और आज भी उतना ही रेलिवेंट है, उतना ही अमेजिंग है। रॉक स्टार एल्बम की बातें हो रही है कंपोज बाय AR रहमान और आज की जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है दैट इज फ्रॉम अमित द्विवेदी जो कि रहते हैं एडिसन में और उनको फिर से उड़ चला जो कि रॉक स्टार का गाना है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि उनका कहना है कि ये गाना सिर्फ एक ट्यून नहीं है, एक फ्लाइट है अपने ख्यालों की, अपने आज़ादी की और अपने सपनों की। और मेरा भी यही मानना है क्योंकि इम्तियाज़ अली के रॉकस्टार एल्बम का ये जो ट्रैक है, मोहित चौहान की मैजिकल आवाज़ और AR रहमान की एक्सपेरिमेंटल कंपोजिशन का एक बहुत ही रेयर जेम है। मतलब लिरिक्स इरशाद कामिल जी की है और ऐसा लगता है कि जैसे जिंदगी का ना खुला आसमान ही उन्होंने लिख दिया हो। मूवी में ये जब मोमेंट था जब जॉर्डन के लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट था क्योंकि तब वो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर म्यूजिक और सफ़र की दुनिया में उड़ चले थे। और इसमें ना कोई फिक्स्ड बीट नहीं है, एक बहुत ही फ्री फ्लो मेलोडी है गाना, बिल्कुल लाइफ की तरह अनप्रेडिक्टेबल। तो मेरे लिए फिर से उड़ चला एक ऐसा ट्रैक है जो बस कहीं पर भी आप सुन सकते हो, चाहे रोड ट्रिप में हो चाहे ट्रेन में हो, हेडफोन्स लगाते ही वर्ल्ड से ना डिस्कनेक्ट कर देता है ये गाना। और अगर आपको भी यही लगता है तो चलिए आपको वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट करते हैं विद दिस सॉन्ग रिक्वेस्टेड बाय अमित द्विवेदी जी। और दोस्तों आपको भी अगर कोई ऐसा एल्बम पसंद है जिसके सारे गाने आपके दिल के बहुत ही करीब है तो मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए रॉक स्टार का फिर से उठ चला राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, Uscabana, Sacabana, Rambana, Murga, Murga, la Virtua, la Murga, Milci, Murga.
2: हेलो,
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे
3: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं,
2: है?
3: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
2: तो
3: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
2: पूरी
3: नहीं नहीं पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
2: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
3: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
2: ये कॉपी मुझे भी भेजना
3: राजी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेज।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वांटेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया आपका, अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। दोस्तों देखिए, ट्यूसडे आ चुका है और ट्यूसडे पे एक टिप तो बनती है, ऐसी टिप जो आपकी इन्वेस्टमेंट में चार चांद लगा दे और सिर्फ चांद ही नहीं सोने पे सुहागा भी बना दे। तो चलिए बुलाते हैं आज की इस खास सीरीज में, गोल्ड डिकोडर सीरीज में, हमारे गोल्ड एक्सपर्ट बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल्स। नमस्ते बॉबी जी, स्वागत है आज की इस खूबसूरत शाम में।
1: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धि जी। दोस्तों आप सबको भी प्यार भरा नमस्कार। सिद्धि जी, पहले गोल्ड का प्राइस शेयर कर दूं
0: जी।
1: आपको बता दूं कि गोल्ड पिछले हफ्ते से 10% हायर चला गया, बहुत खुशी की बात नहीं है, लेकिन ये मैं बोलता हूँ ना, हर चीज के अंदर अगर अच्छाई देखी जाए तो आज सोने का जो भाव है $4,370 पर ट्राउंस ट्रेड कर रहा है और आज सुबह गोल्ड 4435 4435 की हाई टच कर चुका है। तो करेक्शन के साथ $4,370 हाई ट्रेड कर रहा है और पिछले हफ्ते से गोल्ड ऑलरेडी 10% हायर चला गया है। सो सिद्धि जी, मैं तैयार हूँ अब आपके सवाल के लिए।
0: देखिए अभी ऐसे कई सारे लोग हैं, आपने तो पहले ही गोल्ड की रेट सुनाकर हमें धक्का दे दिया है कि यार, जिन्होंने थोड़ा बहुत प्रोकेस्टिनेट लास्ट वीक किया था वो इस वीक थोड़ा सोच रहे होंगे कि ये ऑलरेडी 10% रेट बढ़ चुके हैं। लेकिन आज का जो इस खास मंगलवार की जो शाम है, ट्यूसडे की शाम है, हमें चाहिए आपसे ट्यूसडे टिप, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा सोचते हैं कि आज नहीं कल बाय करेंगे, कल शायद रेट कम हो जाए, लेकिन उसके ही अपोजिट सोचते हुए हमें ये बताइए कि उन लोगों का क्या जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारा सोना पड़ा हुआ है, या उनके लिए क्या टिप हो सकती है ऐसे मार्केट में।
1: देखिए पहले तो आपको बताऊं, मैं और सिद्धि जी रोज आपको एवरीडे अपडेट करते हैं। जब गोल्ड $4,050 या $3,980 के मार्क पे गया था, हम आपको रोज रिक्वेस्ट करते थे कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करें, जल्दी से जल्दी सोना खरीदें। लेकिन जो लेट अतीत दोस्त हमारे सोचते रह गए कि गोल्ड में खरीदना है और समय नहीं निकाल पाए, और गोल्ड आज 10% हायर के साथ $4,370 पर ट्राउंस ट्रेड कर रहा है। मेरी एक सिद्धि जी बहुत अच्छी सलाह है कि हमारे लॉकर्स में ना पुराना सोना पड़ा हुआ है, नई जनरेशन जेंजी मिलेनियल्स, किसी को भी 22 कैरेट के पुराने गहने जो आपने हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई कहीं से भी खरीदे हो, आप उसको आज सोने के बढ़े हुए भाव का फायदा ले सकते हैं। उसको आज के गोल्ड प्राइस के हिसाब से, राज ज्वेल्स के कैरेटोमीटर के हिसाब से, जैसे आज गोल्ड का प्राइस अबाउट $128 22 कैरेट का 1 ग्राम का प्राइस चल रहा है, उस प्राइस में आप अपना पुराना गोल्ड सेल कर सकते हैं और एक्सचेंज में ले सकते हैं नए डिजाइन के गहने, चाहे वो खूबसूरत सा प्यारा सा मंगलसूत्र हो, पोलकी के नेकलेस हो, डायमंड की क्लस्टर बैंगल्स हो, या GI सर्टिफाइड सॉलिटेयर। सिद्धि जी टिप यही है कि उन लॉकर्स को किराया हर महीने देके उस पुराने सोने को संभाल के रख के कुछ फायदा नहीं है, जिनको आप यूज नहीं करते हो और आपकी नेक्स्ट जनरेशन उसको यूज नहीं करेगी। वो मोस्ट ऑफ दी न्यूअर जनरेशन जो अमेरिका में पल रही है, बढ़ रही है, उनको शायद हमारे 22 कैरेट सोने की अहमियत भी नहीं पता होती, और किसी अमेरिकन स्टोर पे अगर वो जाके उसकी वैल्यूएशन कराते हैं या पॉइंट शॉप्स में लेके जाते हैं, हमने बहुत सारे इंसिडेंट्स में देखा है कि उनको आधी वैल्यू भी ऑफर नहीं होती है। सो राज ज्वेल्स अपने रहते हुए कैरेटोमीटर के साथ गोल्ड की प्योरिटी टेस्ट कराएं, आज के सोने के भाव के पैसे इवैल्यूएट कराएं, उसकी रिटर्न एक्सचेंज वैल्यू में GI सर्टिफाइड सॉलिटेयर्स, डायमंड की बैंगल्स, डायमंड के नेकलेसेस, या वो एक्सचेंज में गोल्ड बार्स भी आप घर ले जा सकते हैं राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड में रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करते हुए। सो सिद्धि जी टिप यही है कि जब लोवेस्ट में आप खरीद नहीं सके तो हाईएस्ट में सेल नहीं कर सकते, तो आपके पास जो एटलीस्ट पुराना गोल्ड पड़ा है, पुरानी ज्वेलरी पड़ी है, उसको आए राज ज्वेल्स के कैरेटोमीटर के साथ टेस्ट करें अपने सामने और एक्सचेंज वैल्यू में खूबसूरत गहने घर लेके जाएं।
0: क्या बात है बॉबी जी, थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, यही है आज की ट्यूसडे टिप हमारे खास गोल्ड डिकोडर सीरीज में, जहां होती है थोड़ी चमक थोड़ी समझ विद बॉबी बंसल जी फ्रॉम राज ज्वेल्स। तो आज की टिप तो यही है कि आज के जो बढ़े हुए गोल्ड के रेट है उसका फायदा लीजिए, एक्सचेंज वैल्यू समझिए और राज ज्वेल्स के कैरेटोमीटर में अपना सोना आके जांच कीजिए। आज ही विजिट कीजिए RajJewels.com या फिर राज ज्वेल्स स्टोर ऑन द ओक ट्री रोड इज इन न्यू जर्सी। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट, हिट, हिट, हिट गाना।

एक ऐसा एल्बम जिसके हर एक गाने ने दिल में अलग ही जगह कर दी है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज बात हो रही है एक ऐसे एल्बम के बारे में जिसका यार हर एक गाना बहुत ही खूबसूरत है, और आपके जो सॉन्ग रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम दैट एल्बम वो आज मैं प्ले करने वाली हूँ। जी हाँ, बात हो रही है रॉक स्टार एल्बम की, कंपोज बाय AR रहमान, और ये जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है दैट इज फ्रॉम मोहिनी सांगले, हु इज फ्रॉम एडिसन। और मोहिनी कहती है कि यार इस एल्बम का तुम हो जो ये गाना है यार, एक ऐसा रोमांटिक गाना है ना जो प्यार भी याद दिलाता है और इसकी खुशबू भी ले आता है। मतलब वो कहते हैं ना कि जब प्यार की यादें ऐसे दिल में जगह कर देती है, घर कर देती है ना, तब ये गाना याद आता है। और तुम हो को सुनते ही ना रणबीर और नरगिस की वो साइलेंट केमिस्ट्री याद आ जाती है। इरशाद कामिल के लिरिक्स द अल्ट्रा पर्सनल, जैसे किसी डायरी से निकले हो। और AR रहमान ने इसमें मोहित चौहान और सुजैन डिमेलो की डुएट फील यूज करके यार ये गाना बहुत लॉन्गिंग और लव के लिए बना दिया। तो चलिए ये गाना चलाते हैं आज स्पेशली मोहिनी जी के लिए, जिनकी यार पुरानी यादें इस गाने से ताजा हो चुकी है। अगर आपकी भी हुई है तो जरूर बताना कि आपको ये गाना कैसा लगता है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और अगर ऐसा भी कोई एल्बम है जिसका हर एक गाना आपको बहुत पसंद है, उस एल्बम के बारे में जरूर बताना, उसके हर एक गाने हम यहीं पर प्ले करेंगे। और कहाँ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट
1: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर
3: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स उनका प्यार उनका गुस्सा वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी
4: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल
3: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batchno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल ए के पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओह आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: हर दूसरा गाना सुपर हिट ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट

0: से करेंगे सबका स्वागत।
1: शाम शानदार, let's do nautanki, have a funky time।
2: हर घर की समर की ना अपनी एक सिग्नेचर साउंड होती है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और गर्मी शुरू होते ही कुछ आवाजें रोज सुनाई देने लगती है, फैन फुल स्पीड पे, आइस ट्रे खुलने की आवाज, और फिर किचन से ब्लेंडर का चलना। बस उसके बाद सबको पता होता है कि कुछ ठंडा और मजेदार बनने वाला है। थोड़ी ही देर में ट्रे में आता है लंबा सा ग्लास, थिक क्रीमी मैंगो लस्सी से भरा हुआ, ऊपर हल्की सी मलाई, कभी थोड़े पिस्ता, कभी थोड़ी इलायची। और पहले सिप के बाद बस एक ही ख्याल है, काश ग्लास थोड़ा और बड़ा होता। और घर में अगर चार लोग हो ना तो ब्लेंडर एक बार नहीं, चार चार बार चलता है, क्योंकि हर कोई कहता है यार मेरे लिए भी बना दो, उसकी डिमांड तुरंत शुरू हो जाती है। और शायद इसीलिए मैंगो लस्सी सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, समर का एक रिचुअल है। और उसी रिच आम का स्वाद लाया है दीप अल्फोंसो मैंगो पल्प। तो आज ही ले आइए अपने नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर से, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तो चलिए, अब गर्मी का मूड थोड़ा ठंडा हो चुका हो तो बॉलीवुड के सुरों के साथ शाम को भी रिफ्रेशिंग बनाते हैं, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

बॉलीवुड म्यूजिक का डिबेट कभी खत्म ही नहीं होता। ओल्ड इज गोल्ड या न्यू इज बोल्ड। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और पुराने गाने ना यार टाइम लेते थे दिल में बसने के लिए, लेकिन नए गाने इंस्टेंट वाइब देते हैं। पहले लिरिक्स डायरी जैसे लगते थे, लेकिन आज बीट्स प्लेलिस्ट फ्रेंडली हो गए। दोनों का ना अपना ही अलग चाव है। एक मेमोरी बनाता है, लेकिन दूसरा मोमेंट बनाता है। और शायद इसी बैलेंस में बॉलीवुड म्यूजिक सरवाइव कर रहा है। वैसे आप भी बताओ दोस्तों, आपका मूड आज किस तरफ है, रेट्रो या रीसेंट? डीएम मी ऑन इंस्टा @RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। फिलहाल मेरा मूड क्या कहता है वो तो आप अभी सुनेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. Na wiedwa la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट? वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000। वन सेकेंड सर। आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
1: नहीं तो।
2: आपने नहीं किया है?
1: नहीं
2: तो फिर किसने किया है सर? ये सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
1: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
2: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला? किस पे शक है आपको?
1: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है ना मैंने एटीएम यूज किया है।
2: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
1: मैंने दो पैसे भी निकाले।
2: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
1: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
2: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
1: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है।
2: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे नहीं पता आप मुझे क्या बताए। आप बतमीजी से बात मत करिए। सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
1: क्या
2: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
1: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
3: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
1: लेकिन
2: सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट मिर्ची, फ्रेश माल।
5: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून।

इस गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ। हर प्यार की एक किस्मत होती है दोस्तों, कुछ मिल जाते हैं और कुछ गाने बन जाते हैं। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी और तुम मेरे ना हुए ना सही। ये वो गाना है जो सुनकर ना सिर्फ दिल भर ही नहीं आता, झूम भी उठ जाता है। मतलब थामा का ये जो नया ट्रैक है रश्मिका मदाना के थ्रू, एक आग भी है और एक आंसू भी। सचिन जिगर का म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य के जो लिरिक्स है, मिलकर ऐसा कमाल करते हैं कि मान लो यार प्यार और पेन एक साथ बैठ चुके हो चाय के कप के साथ। मजे की बात तो ये है कि शूटिंग के दौरान रश्मिका ने सिर्फ 1 टेक में ये डांस किया था और पूरे के पूरे क्रू ने क्लैप करके उनकी तारीफ की थी, क्योंकि वो सीन प्योर हार्ट ब्रेक का रियल मोमेंट बन गया था। वैसे अगर आपने ये गाना सुना है तो आपको ये गाना कैसा लगा, टेल मी ऑन इंस्टेट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और अगर नहीं सुना है तो चलिए बजाते हैं आपके लिए, राइट, योर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

जिंदगी का ब्रेकअप मोड ऑन हो या मेल्ट डाउन, एक रेट्रो बीट लगाओ ना तो लाइफ फिर से किक स्टार्ट हो जाती है। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, ये एक जिंदगी काफ़ी नहीं है मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये ट्रैक सुनते ही यार ऐसा लगता है जैसे आशा भोसले का एरा वापस आ चुका है। बेस लाइन रेट्रो, लिरिक्स रेबेलियस और वॉइस में फुल ऑन ड्रामा। वैसे ये गाना गाया है अनुपमा चक्रवर्ती श्रीवास्तवा ने और इस गाने में वो सास डाला है जो कहता है कि यार प्यार गया तो क्या हुआ, मैं तो स्टिल मैं हूँ। वैसे डायरेक्टर वसंत बाला ने सेट पर बोला था कि ठीक जैसे हेलन डांस करती है वैसे ही हुमा कुरैशी को डांस करना है, और कहीं ना कहीं हुमा कुरैशी ने अपने ग्लिटरी ड्रेस और ग्लिटरी अवतार में हेलन को मैच करने की कोशिश की है। वैसे आपने अगर ये मूवी देखी है तो मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHR। और तब तक के लिए आपके लिए मोनिका ओ माई डार्लिंग का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। It's hot.

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स उनका प्यार उनका गुस्सा वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्च

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @ RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।